मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्य

0: मंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता, पर जब दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं। परमहंस योगानंद।

अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए आनंद वर्मा की देशभक्ति रचना, गायक है अंशलाल पंद्रे।

अभी आप अंशलाल पंद्रह के स्वर में आनंद वर्मा की रचना सुन रहे थे। अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया ये भजन। रचनाकार है तुलसीदास।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। आलेख प्रोफेसर शरद नारायण खरे का है, वाचक है दिनेश नामदेव।
1: ये जीवन

0: पाठशाला है। इसमें हर मनुष्य को हर पल नया ज्ञान, नया अनुभव और नई सीख हासिल होती रहती है, पर व्यक्ति कई बार अपनी मानसिकता को रुग्ण आवेगों से भर लेता है, इसीलिए उसका जीवन क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे विपरीत संवेगों से भर जाता है और वो नकारात्मक कार्यकलापों, रुग्ण गतिविधियों और असम्यक चिंतन से युक्त हो जाता है। अनैतिक आचार विचारों में खोया मनुष्य सदैव शिथिल और बोझिल रहता है। जब जीवन में उल्लास और उमंग नहीं होगी, जब आंतरिक चेतना नहीं होगी, तो जीवन स्वाभाविक रूप में नैराश्य, अवसाद और हताशा से भर जाएगा। वास्तव में हर मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, जीवन एक सीधी पगडंडी है, इस पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाओ, पर जहां मोड़ मिलता है तो मुड़ना भी जरूरी होता है। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, जीवन एक सीधी पगडंडी है, इस पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाओ, पर जहां मोड़ मिलता है तो मुड़ना भी जरूरी होता है। इसी को परिस्थितियों के साथ तादात्म्य बैठाना भी कहा जाता है। सेंट मार्टिन ने लिखा है, जीवन उतना आसान नहीं होता जितना कि आप और हम समझते हैं, बल्कि ये अनेक विषमताओं और जटिलताओं से भरा हुआ होता है, और जैसा हम सोचते हैं, चाहते हैं, वैसी अनुकूलताएं भी नहीं होती हैं। इसलिए जो हकीकत है उसे स्वीकार करो और समग्र आशा, विश्वास तथा उमंग के साथ आगे की ओर बढ़ते रहो, तभी जीवन में कुछ हासिल हो पाता है। जीवन का एक अलग ही रूप होता है। अगर आप इसे वरदान समझकर जिएंगे तो ये वरदान प्रतीत होगा, पर यदि इसे अभिशाप समझकर निराश रहेंगे तो ये सदैव दुख तकलीफ ही देगा। लोग कहते हैं कि मेरी बदकिस्मती से सारी परेशानियां मुझे ही मिली हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हर शख्स के जीवन में परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, पर संकल्प शक्तिहीन व्यक्ति निराश हो जाता है, वहीं दृढ़ और इरादों का बुलंद व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता जाता है। जिसने आशा का दामन छोड़ दिया, उसे कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्चाई है कि सफलता का वास हमारे मन में होता है, हमारे विचारों में होता है। इसलिए अगर हमने निराशा को गले लगा लिया तो फिर ये सुनिश्चित है कि फिर हमें कोई भी सफलता नहीं दिला सकता। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, आशा से आकाश थमा है। वास्तव में उसका आशय यही है कि यदि आशा का भाव हमारे अंतर्मन में नहीं है तो हमें प्रतीत होगा कि आकाश भी टूटकर हमारे सिर पर गिरने वाला है। ये यथार्थ है कि अगर हमें संघर्ष में सफलता प्राप्त करनी है, असफलता को पराभूत करना है, अंधकार हटाकर प्रकाश बिखेरना है, कांटों की जगह पुष्प खिलाना है, अपने स्वप्न को फलीभूत करना है, तो हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। आशावादी इंसान सदैव दृढ़ संकल्पित और इरादों का मजबूत होता है, क्योंकि आशावादी रहने से हमें आत्मविश्वास और आत्मबल प्राप्त होता है, जो कि निराशावादी होने से स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसलिए आशावादी बनकर हमें उच्च सफलता का वरण करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख प्रोफेसर शरद नारायण खरे का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन, स्वरवाणी जयराम का है।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत वन गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर वाणी जयराम का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी, जिसमें आज किसान भाई सुने इस समय की किसानी के बारे में जानकारी।
1: किसान बहनों भाइयों, जून का माह आरंभ हो चुका है, तो इस सप्ताह के लिए आपको किन किन कृषि कार्यों की तैयारी करनी हम बताते हैं। जो खरीफ फसल है उसका समय आ रहा है, अपनी मांग के अनुसार अपने क्षेत्र की सहकारी समिति या पंजीकृत डीलर से खाद, बीज, कल्चर, बीजोपचार की दवा, जिप्सम, जिंक सल्फेट, ये सामग्री आप एक सूची बना के इसको व्यवस्थित कर लें।

0: सिंचित दशा में मक्का की बुआई इस माह के मध्य से प्रारंभ कर सकते हैं। भूमि और बीजोपचार के बाद फसलों की बुआई करनी होगी। अगर गन्ना आप ले रहे हैं तो गन्ने की फसल में सिंचाई और खड़ी फसल में नत्रजन की आखिरी मात्रा का जैसे ही वर्षा शुरू होती है उस समय पहले पानी के बाद डाल दें और साथ में मिट्टी भी चढ़ाना होगा। यदि हमारे पास सिंचाई के साधन है तो सोयाबीन की बुआई की तैयारी भी करनी होगी। यदि हमारी भूमि क्षारीय निकलती है तो उसके सुधार के लिए जिप्सम से सुधार कर सकते हैं। जो प्राकृतिक जल वर्षा के माध्यम से हमको मिलता है ये हम भूजल के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी होगी। छोटे फलदार पौधों को अभी बहुत गर्म होने पे लू से बचाएं, इसके लिए आसपास टाटियां बांधें या वायु अवरोधक वृक्षों को लगाएं। बेर की कटाई की गई झाड़ियां जो होती हैं इसमें नई फुटान और उन्नत किस्मों के पैबंद आप चढ़ा सकते हैं। पपीते के नए बगीचे लगाने के लिए पौध तैयार करें। अमरूद और अनार के पौधों में उम्र के हिसाब से कंपोस्ट खाद और नत्रजन उर्वरक अवश्य दें। आम और नींबू वर्गीय फल के वृक्षों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें और साथ में नत्रजन का उर्वरक देते जाएं। सब्जियां भी हम लेके लाभ कमा सकते हैं, जैसे बैगन, टमाटर, खरीफ प्याज, अगेती फूलगोभी, मिर्च, इनकी पौध तैयार करके खेती कर सकते हैं। बैगन, टमाटर, मिर्च में मोयल या सफेद मक्खी और हरा तेला फल और तना छेदक मक्खी की रोकथाम के लिए प्रयास करने होंगे। जो किसान बहन भाई फसल के साथ साथ फूलों की खेती करना चाहते हैं तो गेंदा और गैलार्डिया की पौध ले सकते हैं। अब बात करें यदि पशुपालन में गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, इसका टीका लगाना जरूरी होता है और पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए प्रयास करें, उन्हें कृमिनाशक दवाएं पिलाएं। किसान बहनों भाइयों, कृषि को यदि आपको लाभ का धंधा बनाना है तो इसके लिए हमारी पहली सलाह हमेशा रहती है जैविक और टिकाऊ खेती को आप अपनाएं। कम लागत तकनीक का उपयोग खेती में करें। रबी फसलों के बचे हुए अवशेष जो होते हैं इनको आग से ना जलाएं, उन्हें मिट्टी में मिला दें ताकि वो खाद बन जाएं। उबड़ खाबड़ खेत हैं तो समतलीकरण करें और मेड़ों की मरम्मत का कार्य भी जल्दी पूरा कर लें ताकि पानी का संरक्षण हो सके। अब बात करें यदि ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की तो इसकी तुड़ाई का कार्य पूरा कर लें। गर्मी की धान जिन किसान बहन भाइयों ने लगाई है उनकी कटाई, गहानी और भंडारण जल्दी पूरा करें। कटाई में यदि विलम्ब हो रहा है तो हार्वेस्टर से जल्दी कटाई करके धान को सुखाकर भंडारण करें। इस समय रबी फसल के संग्रहण की गई उपज को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें और आप जानते ही होंगे कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि दाना सूख गया है। दांत में दबा के देखें, कट की आवाज यदि आती है तो मतलब दाना सूख गया है। इसमें कम से कम 10 से 12% नमी होनी चाहिए। रात भर अनाज सामान्य तापक्रम पर ठंडा होने के लिए रख दें, उसके बाद ही साफ सुथरी कोठियों, बोरियों और भंडारण की जगह पर इनको इकट्ठा करें। जिन किसान बहनों भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो धान की श्री पद्धति से खेती करने से जो सामान्य धान की उपज होती है उसकी अपेक्षा आपको दुगना तिगना उत्पादन मिलेगा। इसके लिए नर्सरी डालनी होगी, खेत की जुताई करके रोपित रकबे का 1/10 नर्सरी के लिए आप बना सकते हैं और ये ध्यान रखें कि नर्सरी उठी हुई क्यारियों से बनाएं। साथ ही जो बीज की बुआई आपको करनी है उसमें बीजोपचार का ध्यान अवश्य रखें। इस पद्धति में धान की नर्सरी की रोपाई 10 से 15 दिन की उम्र में अवश्य कर दें, विलंब होने से आपको घाटा हो सकता है। जो श्री विधि हम बता रहे हैं इसमें धान का बीज लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ लगता है जिसमें आपकी लागत भी बचती है और विद्युत मोटर पंप या डीजल इंजन को वर्षा शुरू होने के पहले इसके साथ साथ अन्य कृषि यंत्रों को भी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके सुरक्षित स्थान पर रख दें और खरीफ की बोनी के लिए उपयोग आने वाले जो भी बैल या शक्ति चलित यंत्र हैं इनकी मरम्मत का कार्य पूरा करके तैयार कर लें।
1: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे इस समय की किसानी के बारे में जानकारी। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इसमें सुनिएगा श्री राजेंद्र दानी की लिखी कहानी पार गमन।

सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसदार होगा सुबह 9 बजे। कलाकार होंगे इमराज चढ़ार और साथी और रेवा राम विश्वकर्मा। उर्दू कार्यक्रम आईना 9:30 पर भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे गौरव गान की 150वीं वंदे मातरम। विश्व दर्पण 10:10 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी न्यूज हेडलाइंस से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी। फिल्म संगीत 5:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे। लोक संगीत 6:30 पर कलाकार होंगे शोभा भट्ट। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। इसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:21 पर। इसमें किसान भाई सुनेंगे कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन, डॉक्टर SB अग्रवाल की वार्ता। सुर्खियों में रात 8 बजे 8:15 पर फिल्म संगीत। स्पॉटलाइट रात 9:15 पर 9:30 पर पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन सुनिएगा रात 10:30 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिकयात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे, स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे, अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पंचमंत्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमंत्रिमंडलस्य मंत्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन 10 चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 44 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखंडे 2 आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचल प्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जून मासस्य 18 मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 वर्षात् 70-29 वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखला अपि विजिता। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की

0: 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारीपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब। विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती

0: बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ, 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
0: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
2: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
0: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देश भर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। ये कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
5: बैतूल जिले के 9-10 गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 144,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाहजहांपुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरसेटी संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज है 1 जून और आज हम पहले बात करते हैं अभिभावक दिवस की। 1980 के दशक से परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में तेजी से आई है। महासभा ने कई प्रस्तावों को अपनाया और परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और परिवार दिवस की घोषणा की। बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए वैश्विक अभिभावक दिवस इस बात को मान्यता देता है कि बच्चों के पालन पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार की है। बच्चों के संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें पारिवारिक वातावरण में सुख प्रेम और समझ के माहौल में पलना बढ़ना चाहिए। वर्ष 2012 में महासभा द्वारा नामित वैश्विक अभिभावक दिवस सभी अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान के लिए सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चों के कल्याण और विकास में परिवार, माता पिता और देखभालकर्ता केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों और किशोरों को पहचान, प्यार, देखभाल, पोषण और संरक्षण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की भावना के अनुरूप परिवार और पालन पोषण संबंधी सहायता को राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों और सामाजिक निवेश पैकेजों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में तेजी से मान्यता दी जा रही है, जिनका उद्देश्य गरीबी को कम करना, असमानता को घटाना और माता पिता और बच्चों के सकारात्मक कल्याण को बढ़ावा देना है। यूनिसेफ 1 जून को माता पिता के लिए एक साथ इस विषय के तहत वैश्विक अभिभावक दिवस का शुभारंभ करेगा। इस कार्यक्रम में एजेंसी का माता पिता बनना एक वीडियो लॉन्च किया जाएगा और इस बात पर जोर देगा कि बच्चों को जीवन में एक मजबूत शुरुआत देने के लिए देखभाल करने वालों को कितना समय और समर्थन चाहिए। इस वीडियो में दुनिया भर के देखभाल करने वाले अपने पालन पोषण के भावनात्मक पहलुओं को साझा करते हैं। माता पिता बनना एक यात्रा है, प्यार, चुनौतियों और अंतहीन सीख से भरी एक यात्रा। बच्चे का पालन पोषण करना हर माता पिता का सबसे अनमोल कर्तव्य है, लेकिन अक्सर दुनिया में देखभाल करने वालों को ये जिम्मेदारी अकेले ही निभानी पड़ती है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

हम साथ साथ हैं। इस फिल्म का गीत आपने सुना हरिहरन घनश्याम प्रतिमा संतोष की आवाज में, गीत समीर ने लिखा था, संगीत राम लक्ष्मण का था।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, अब सुनिए श्री राजेंद्र दानी की लिखी कहानी पारगमन।
4: अकेली रह रही हैं पर खुश रहना चाहती हैं। यह होता नहीं पर करना पड़ता है। समय इतनी तेजी से बदला कि कुछ पता नहीं चला। यह जब तक दूर कहीं बदल रहा था तो तकलीफें नहीं थीं, पर यह बदलते बदलते उनके घर में तेजी से घुस आया। वे किसी भी तरकीब से रोक नहीं सकी उसे और अब खुद तकलीफों में घिराई हैं। उनकी ये तकलीफें दूसरों के लिए अविश्वसनीय हैं, इसलिए बयां नहीं की जा सकती। वे मजबूरी में करती भी नहीं। लड़का अमेरिका में है, लाखों कमा रहा है। नए समय के लोग जिसे सुख कहते हैं वह उन्हें उपलब्ध है। अभी गर्मियों के ठीक पहले बेटा आया था तो उनके बेडरूम में एक महंगा स्प्लिट एयर कंडीशनर लगवा गया। कहने को सुख और आराम और बढ़ गया। अगले साल आएगा तो कुछ और बढ़ा जाएगा। कॉलोनी वालों से कुछ छिपा नहीं रह सकता। एयर कंडीशनर का एग्जास्ट बाहर लगा तो सभी को पता चल गया कि मिसेस खरे के घर एक एयर कंडीशनर लग गया है और लोगों ने बधाइयां दे डाली। अपने सुखों को लोग किसी गुप्त रोग की तरह तो पाल नहीं सकते। शायद सुख दिखाने के लिए ही होता है। वे कभी कभी इस तरह खुद भी सोचती हैं और अनजाने व्यंग से खुद पर हंसती हैं। वे सोचने के लिए पूरा वक्ती हैं। यही कोई 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। उन दिनों इन दोनों को सुख इस तरह नहीं थे। वक्त भी नहीं मिलता था कामों के कारण। अब वक्त ही वक्त है और कामों को करने के लिए कई लोग हैं। अपनी बेटी से मिले 3 वर्ष गुजर गए हैं। दामाद ऑस्ट्रेलिया में हैं और अब उनका 1-2 साल का बेटा है जिसे उन्होंने आज तक देखा नहीं है। गनीमत यही है कि उनका अपना बेटा हर साल कुछ दिनों के लिए आ जाता है, अन्यथा तो हर महीने उसके पैसे ही आते हैं भरपूर। वह भी अपनी पत्नी सहित है वहाँ। 2 महीने में वह भी बाप बन जाएगा। वे बचत नहीं करती, तेज़ी से खर्च करती हैं। बेटा ऐसा है कि हिसाब नहीं पूछता कभी। इस पर उन्हें कई बार एतराज भी होता है और बेटे से कहती हैं तो उसका एक ही जवाब रहता है, माँ पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं। इस बात पर वे हंसती भी हैं और दुखी भी होती हैं। और उसी वक्त उन्हें स्वर्गीय पति की याद आ जाती है जो हमेशा बचत न होने पर झुंझलाते रहते थे कि पैसे नहीं हैं। वे तो अभाव देखते देखते ही नहीं रहे। आज वे होते तो शायद इन सुखों का वास्तविक अर्थ निकल सकता था, लेकिन कॉलोनी वासी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहते नहीं थकते, आंटी आपके जैसा सुखी कॉलोनी में कोई नहीं है। इस टिप्पणी को करने से वे किसी को रोक नहीं पाती। वे जानती हैं कि ऐसा करने पर लोग हंसेंगे और उनको शायद पागल भी समझेंगे। अभी दोपहर की शुरुआत बस होने ही वाली थी। बाहर कड़कड़ाती धूप थी पर अंदर पंखी की हवा के नीचे इसका एहसास मुश्किल था। खुद को स्मृतियों से विलग करने के लिए उन्होंने रिमोट उठाकर TV ऑन कर दिया। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। सामने TV स्क्रीन पर लगभग 50 वर्ष पुराना यह गाना सुनाई दिखाई दे रहा था। यह उनका पसंदीदा गाना है, पर उस वक्त अच्छा नहीं लगा देख सुनकर। दरअसल वह उन्हें फिर से स्मृतियों में घसीट रहा था। आज बूढ़ी हो चुकी अभिनेत्री अरुणा ईरानी, जो उस वक्त एक बाल कलाकार थी, इस गाने में बच्चों के साथ गाती नजर आती है। उन्हें याद है बचपन में उनका चेहरा उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। कैसा गर्व और गौरव से भर देता था यह गाना उन दिनों। वे जानती हैं आज के बच्चों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है यह उन्हें नहीं पता। वे सिर्फ इतना जानती हैं कि 1947 में उनका देश आज़ाद हुआ था और वे उसके 4 साल बाद पैदा हुई थीं, और शायद जब वे 8 साल की थीं तब उनके घर के पास वाले मैदान में एकदम ठंडी हवा बहती रहती थी। कहीं रोक टोक नहीं थी। वह घरों में निर्द्वंद चली आती थी। उस वक्त किसी घर में एयर कंडीशनर नहीं हुआ करते थे। धूप कभी भी तीखी नहीं हुआ करती थी। पर अब भगवान जाने क्यों सारी अनुभूतियां उलट पुलट हैं। उनकी समझ बिना किसी विचलन के यहां तक ही उनका साथ दे पाती है और शांत रहती है। इसके आगे के प्रश्नों पर जाने से अजीब सा तनाव भर जाता था दिले दिमाग में। उस वक्त भी ठीक ऐसा हुआ और वे हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। बाहर गेट पर कुछ आवाज़ें आ रही थीं। न जाने कैसे उन आवाज़ों ने तुरंत उन्हें अजीब सी राहत से भर दिया। उन्होंने तेजी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। बाहर उन्होंने देखा आंगन में बाउंड्री वॉल पर बना लोहे का भारी गेट खुला हुआ है और 2-3 छोटे छोटे बच्चे खिलखिलाते हुए अंदर चले आ रहे हैं। इसके पहले कि वे उन्हें रोक पाती कि पीछे से ज्योति बाई भी दोनों हाथों में भरे हुए झोले पकड़े आते दिखी। बच्चों ने उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ड्राइंग रूम में रखे सोफों पर जाकर पसर गए और टीवी पर चल रहे उस गाने को ध्यान से देखने लगे जिसे देख कर वे उठ गई थी। ज्योति बाई उनके घर खाना बनाती है और बाहर के कुछ छोटे बड़े काम भी कर देती है। वे समझ ना पाए कि सुबह ही उनके लिए खाना बनाकर गई ज्योति अभी फिर क्यों चली आ रही है। वह उनकी हम उम्र है पर सुहागन है। उसका पति गांव में खेतीहर मजदूर है और दो बेटे यहीं शहर में रिक्शा चलाते हैं। वह उन्हीं के साथ रहती है। इन दो बेटों के 5 बच्चे हैं। इन बच्चों को छोड़कर उनकी झोपड़ी में सभी कोई ना कोई काम जीवन यापन के लिए करते हैं। ज्योति बाई जो अब 65 साल की है खुद भी 2-3 घरों में खाना बनाकर कुछ पैसा कमा लेती है। वह अक्सर बताती रहती है कि वे लोग सब बड़ी राजी खुशी से रहते हैं। चलो रे उतरो सोफा में से नीचे बैठो, ज्योति बाई ने ड्राइंग रूम में घुसते हुए बच्चों को डांटा। फिर वजनदार झोलों को नीचे रखते हुए उसके पास तक पहुंच चुकी मिसेस खरे से कहा, ये मुरहा मुरी बिल्कुल नहीं डराएं, दिन रात चैन नहीं है इनके मारे। उन्होंने देखा ज्योति बाई के चेहरे पर पसीना छलछला रहा है और वह हाँफ भी रही है, पर बच्चों की शिकायत करते हुए या उन्हें डांटते हुए उसकी हमेशा की मुस्कान कमज़ोर नहीं पड़ी है बल्कि उसमें ममता का गाढ़ा रंग चढ़ाया है। उन्होंने यह देखकर मन ही मन ज्योति बाई की प्रशंसा की, फिर धीरे से कहा, अच्छा थोड़ी देर बैठो। फिर एक पल रुककर दोबारा कहा, क्या लेने गई थीं? तभी टीवी देखते हुए बच्चों ने ना जाने किस बात पर जोर से तालियां बजाईं और खिलखिलाने लगे। ज्योति बाई फिर जोर से चिल्लाई, काय रे हल्ला काय मचा रहे हो, और उतरो सोफा माँ से, उतरो जल्दी। बच्चे डांट सुनकर सोफे से उतरकर फर्श पर बैठ तो गए पर उनकी निगाहें टीवी से हटी नहीं। तब राहत भरी आवाज़ में ज्योति बाई ने उनसे पूछा, का पूछ रही थी आप, का लेने गए हते? अरे अब का बताएं, श्रीवास्तव साहब के इतने से खाना बना के निकरे हते कि दुबे जी ने बुला लो और कहने लगे कि आज शाम को उनके घरे मेहमान आबे वारे हैं तो सब्जी ला दो, बस बई ले के चले आ रहे हैं। आजकल घाम में चक्कर सुहात है तो जे मुरहा मुरी को लेत गए हते, इनको इतनो आसरो तो है। ज्योति बाई के इतना कहने पर उन्होंने एक नज़र मासूम बच्चों पर डाली तो अचानक उन्हें याद आया कि उनका भी एक नाती है, पर कितने अफसोस की बात है कि उन्होंने उसे देखा तक नहीं है। और ये ज्योति बाई को देखो, इसके यहाँ 5-5 बच्चे हैं। इस मामले में वह कितनी सुखी है और लोग कहते हैं कि वे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा सुखी हैं। टीवी पर कोई दूसरा गाना कब का शुरू हो चुका था और बच्चों की टकटकी वहीं पर थी, लेकिन उन्हें इस तरह स्थिर देखकर ज्योति बाई की कुछ समझ में नहीं आया। वह अचानक घबरा गई, फिर उठते हुए और उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, का होगा बहन जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? वे चौंक गई और शर्मिंदा होते हुए हड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ तबीयत ठीक है बिल्कुल, पर यह तो बताओ कि तुम दुबे जी के घर सीधे ना जाकर यहाँ कैसे चली आई? अरे हम कहाँ आ रहे थे, बात तो सामने से जा रहे थे तो जय मुरहा मरी को पता नहीं का भाव बे इतना ही घुसा आए सीधे। हम मना करत रहे मनु बे मानत कहाँ हैं, असल में एक आध बेरा इतने आ चुके हैं। एक बार आप ही ने इन औरों को मिठाई खिलाई हती, याद है आप हैं? आप हैं याद ना हुई है मनो, जे कहाँ भूलत है, कई बेर हमसे कहत रहे थे कि आपके घर चलें। उन्होंने पलटकर बच्चों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बच्चे उन्हें न जाने कैसे पहली बार एकदम साफ सुथरे और मासूम लग रहे थे। वे सच को जानते हुए भी समझ न सकें कि यह क्यों हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी तरह की खुशी में भी तैर रही हैं, शायद उनकी ममता भी अंगड़ाई ले रही थी। अब इस स्थिति में वे दोबारा पलटकर ज्योति बाई की तरफ नहीं देखना चाहती थीं। कोई भय उनके भीतर अनायास समाने लगा था। तभी अचानक ज्योति बाई ने उठते हुए बच्चों से कहा, चलो रे घरे चलिए। यह सुनकर अचानक वे ना चाहते हुए भी ज्योति बाई की तरफ पलटी, उन्हें कुछ सूझा नहीं, ठिठकते हुए कहा, ज्योति बाई एक मिनट रुको मैं आती हूँ। वे तेज कदमों से अंदर किचन में चली आईं और स्थिर खड़ी हो गईं। बड़ी देर तक उन्होंने यहाँ से वहाँ तक सोचते हुए नज़र दौड़ाई, फिर दीवार की खूंटी पर टंगे एक बड़े से झोले को अपने हाथ में लिया और दुगनी गति से बेडरूम में पहुंचकर बिस्तर पर पड़े अपने पर्स को उठाया और 100 का एक नोट निकालकर जल्दी जल्दी ज्योति बाई के पास वापस चली आईं। ज्योति बाई उठते उठते फिर बैठ गई थी। उन्होंने उसे देखे बिना झोले को और 100 के नोट को उसकी ओर बढ़ाया और आदेशात्मक लहजे में कहा, तुम मेरे लिए भी जरा 5 किलो प्याज और 2 किलो आलू तो ला दो, मैंने अभी किचन में देखा बिल्कुल नहीं है। अब ज्योति बाई की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अचानक बदल गया उनका यह व्यवहार, उसे विस्मित कर गया। वह अवाक हो गई थी। वह इतना थकी हुई थी कि एकाध घंटे लेटे बिना उसका काम नहीं चलने वाला था। वह देख नहीं रही थी कि उसके चेहरे पर असमंजस युक्त पीड़ा उभर आई है उनके आदेश से। उनके अनेक एहसानों से वह इस तरह दबी हुई थी कि उन्हें ना कहना बहुत मुश्किल था। दर्द की एक तेज लहर उसके माथे से गुजर गई। वह लाचारगी के साथ उठी और बच्चों को आवाज़ दी, चलो रे फिर चलें। पर उसकी बात काटते हुए उन्होंने कहा, बच्चों को यहीं रहने दो और लौट कर लेते जाना, अब धूप इतनी चढ़ाई है कि बच्चों को लू लग सकती है। ज्योतिबाई को लगा कि वे ठीक

0: ही तो कह रही हैं, पर वह तब भी समझ नहीं पाई कि वे यह सब कहते हुए मुंह क्यों फेरे हुए हैं। वह किंचित शंकास्पद हो गई, पर अपनी इस शंका को समझ न सकी। पर यह सब सुनकर बच्चों ने पहली बार टीवी से नजरें हटाकर उन दोनों को देखा। बच्चों के चेहरों पर एक अनजानी बेबसी छाने लगी थी। वे छटपटा कर उठ खड़े हुए, लेकिन ज्योतिबाई ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम और इतना रुको, हम अभय हाथ हैं। उसके स्वर में गहरी मायूसी थी। इतना कहकर वह धीमी गति से बाहर निकल गई। तेज धूप में बाहर वीरानी थी। उन्होंने जाती हुई ज्योतिबाई को अब गौर से देखा और पलटकर बच्चों से पूछा, तुम लोग कुछ खाओगे? एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर उभर रही थी। बच्चे बेआवाज निश्चल अपनी जगहों पर ही खड़े थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने इस स्थिति पर गौर नहीं किया और तेजी से किचन में रखे फ्रिज के पास पहुंचकर उसे खोला। एक स्टील के बड़े कटोरे में सफ़ेद रसगुल्ले रखे हुए थे। कटोरे को उठाते हुए मन ही मन रसगुल्लों की संख्या गिनी, फिर आश्वस्त होकर सीधे बाहर आ गईं, जहां बच्चे पहले जैसे ही खड़े हुए थे। उन्होंने कटोरे को टेबल पर रखा, फिर बच्चों को बेहद प्यार से पुचकारते हुए कहा, लो बेटे रसगुल्ले खाओ। पर बच्चे हिले तक नहीं, वे जैसे बुद्ध बन गए थे।
1: पारगमन। अभी आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र दानी की लिखी कहानी। श्रोताओ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा और रंक का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, अब बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस की। हर साल 1 जून को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करना है और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। दूध मानव जीवन के पोषण का सबसे पहला और अनिवार्य स्रोत है। शिशु के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक दूध शरीर को ऊर्जा और मजबूती देता है। इसी वैश्विक महत्व को देखते हुए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि संपूर्ण आहार है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 2001 का साल था, उस साल ये शुरुआत इसकी की गई। 1 जून की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय तक कई देश पहले से ही इस राष्ट्रीय दिवस को मना रहे थे। तब से हर साल दुनिया भर में डेयरी उद्योग और दूध के महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मददगार है, विटामिन डी और B12 मानसिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, पोटेशियम ब्लड प्रेशर रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। विश्व दुग्ध दिवस केवल एक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये उन करोड़ों किसानों, पशुपालकों और डेयरी श्रमिकों को सम्मान देने का दिन है जिनकी आजीविका इस उद्योग से चलती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आज के मिलावट वाले दौर में शुद्ध दूध और डेयरी उत्पादों का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। विश्व दुग्ध दिवस पर हमें संतुलित आहार में दूध को शामिल करने का संकल्प लेना चाहिए, साथ ही पशुओं की

उचित देखभाल और डेयरी किसानों के अधिकारों का समर्थन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो श्रोताओ, ये तो थी बात विश्व दुग्ध दिवस पर, और अब सुनिए ये गीत।

प्रीति सागर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म मंथन से। गीत लिखा था नीति सागर ने, संगीतकार थे वनराज भाटिया। इसके साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब समाप्त होता है।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
6: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जारी।

0: को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं।

0: से उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, फिल्म नीलकमल से। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। इससे पहले हमने जो आपको गीत सुनाया था उसे हमने लिया था फिल्म लाल पत्थर से। गायक थे मोहम्मद रफ़ी। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार थे शंकर जय किशन। अब सुनिए फिल्म पत्थर का ये नगमा। गीत लिखा है कुलवंत जानी ने, संगीत से संवारा है राम लक्ष्मण ने, गायक हैं पंकज उधास।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:58 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।

0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया। सबसे ज्यादा तापमान शाहजहांपुर में 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं इमराज चढ़ार और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में ये चेतावनी गीत।
2: करिए राम

रिवरम विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने ये बुंदेली लोकगीत सुना। अब सुनिए ये पारंपरिक लोकगीत।

रेवाराम विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने लोकगीत सुना, और अब सुनिए इनका गाया ये देवी गीत।

रेवाराम विश्वकर्मा के गाए इस बुंदेली देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आईना हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, शहर भोपाल जिसे नवाबों और बेगमात का शहर कहा जाता है, साथ ही साथ झीलों और तालाबों का शहर भी तस्लीम किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भोपाल के पानी की तासीर कुछ ऐसी है कि शहर में बाहर से आकर बसने वालों को ये अपना लगने लगता है, क्योंकि इस शहर का मौसम, यहाँ के दिलकश मनाजिर, तालाबों पर चहचहाते परिंदे और खुसूसन इस शहर की आबो हवा सभी को रास आ जाती है। भोपाल शहर को तालाबों और झीलों के शहर के तौर पर तो जाना जाता है, साथ ही इसे उर्दू जबान, अदब और शायरी का एक कदीम और अहम तरीन मरकज भी कहा जाता है। यहाँ की फिजा सदियों से शेरी व अदबी रिवायत की अमीन रही है, जिसने बेशुमार शौरा और उदबा को कुर्ब जवार और दूर दराज से भोपाल आने पर मजबूर किया। उन्हीं में से एक नाम है शायर शाहिद मीर का, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 1949 में शहर भोपाल के नजदीक सिरोंज में पैदा होने वाला ये शायर भी शहर भोपाल के अदबी माहौल में आकर परवान चढ़ा और यहीं का होकर रह गया। शाहिद मीर की शायरी में बेशुमार रंग मौजूद हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर जिसका उन्वान है मध्य प्रदेश के शायर शाहिद मीर की शायरी, और मुकर्रर हैं महमूद मोहम्मद खान। समात फरमाइए।
1: बदन तमाम हुआ, रूह रह गुजर में है, सितारा बुझ भी चुका, रोशनी सफर में है। सिरोंज मध्य प्रदेश का एक ऐसा मर्दुम खेज कस्बा है जो इब्तदाई ज़माने ही से अपनी तहजीब, अदब व सकाफत, वज़ादारी और मेहमान नवाजी के लिए अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। मशहूर शायर डॉक्टर शाहिद मीर ने 10 फरवरी 1949 को वतन अजीज की इसी मिट्टी में एक इल्मी व अदबी घराने में जन्म लिया। आपके वालिद मीर इरफानी और नाना हजरत नातिक मालवी मध्य प्रदेश के उस्ताद शुआरा में शुमार किए जाते हैं। गोया शाहिद मीर को शायरी विरासत में मिली थी। आपने भोपाल यूनिवर्सिटी से नबातात में एमएससी और पीएचडी की डिग्रियां हासिल करके सूबे राजस्थान के बांसवाड़ा और बाड़मेर के कॉलेज में दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम दी। सन 2007 में बाड़मेर के सरकारी कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल के ओहदे से सुबकदोश होकर भोपाल के कोहे फिजा मोहल्ले में क़याम पजीर रहे। आपने उर्दू शायरी के हवाले से 3 शेरी मजमूए, मौसम जर्द गुलाबों का, साजीना और रेगे रवां के नाम से यादगार छोड़े हैं। 2 शेरी मजमूए, कल्प वृक्ष और ए समंदर कभी उतर मुझमें, देवनागरी में शाये हुए। 1 किताब हिंदुस्तानी मूसीकी के नाम से मंजर आम पर आई। आप

0: दोस्तों, अभी आप गुलुकारा पहनाज मसानी की दिलकश आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था शकील बदायूनी का। सामईन, शहर भोपाल उर्दू जबान अदब और शेरी रिवायात का तारीखी मरकज है। यहाँ नवाबी दौर से जारी मुशायरों की रिवायत ने शहर को शायरी का गहवारा बना दिया। यहाँ के नामवर शौरा ने उर्दू अदब को मुनफरिद लबो लहजा अता किया, जिसके सबब मुनफरिद लबो लहजा रखने वाले बेशुमार शौरा और अदबा यहाँ परवान चढ़े। उन्हीं में से एक नाम है आरिफ अली आरिफ का। आइए सुनते हैं शायर आरिफ अली आरिफ से उनका कलाम, उन्हीं की जुबानी समात फरमाइए।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, दो तीन शेर पहले गजल के मतलब देखिएगा कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, मसलहत के कुछ तकाजे हैं जरा समझा।

करो कि यार तुम संजीदगी से इतना मत सोचा करो, मसलहत के कुछ तकाजे हैं जरा सोचा करो। और शेर देखिएगा कि जर्राए नाचीज उस पर चांद छूने की ललक, कि जर्राए नाचीज उस पर चांद छूने की ललक, जो कभी पूरे न हो वो ख्वाब मत देखा करो। जर्राए नाचीज उस पर चांद छूने की ललक, जो कभी पूरे न हो वो ख्वाब मत देखा करो। शेर देखिएगा कि पापियों ने पाप धोकर इसको मेला कर दिया, कि पापियों ने पाप धोकर इसको मेला कर दिया, नेकियां कुछ इसमें डालो और इसे उजला करो। वो शेर देखिएगा कि बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, कि बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, अपने गम तुम दोस्तों के दरमियां साझा करो। बांटने से बढ़ती हैं खुशियां तो गम होते हैं कम, अपने गम तुम दोस्तों के दरमियां साझा करो। मकता देखिएगा कि सिर्फ आरिफ नाम रख लेने से कुछ हासिल नहीं, कि सिर्फ आरिफ नाम रख लेने से कुछ हासिल नहीं, लोग तुमको याद रखें काम कुछ ऐसा करो, लोग तुमको याद रखें काम कुछ ऐसा करो। दूसरी गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि मतलब है कि अब

और ये शेर भी देखिएगा, गजल का आखिरी शेर, उनके अफ़आल से एहसास हुआ है।

को तुम्हारा देखना, फिर उसी अंदाज से मुझको दोबारा देखना, कि ये तो अपना अपना एहसास है।

से बसीरत है मियाँ, मैं समंदर देखता हूँ, तुम कनारा देखना। कोई शेर देखिएगा कि आपकी फहमो फरासत

से जिस गली होगा इशारा देखना। मक्ता पेश कर रहा हूँ, आखिरी देखिएगा। कि नफरतें आरिफ ज़्यादा देर तक रहती नहीं, नफरतें आरिफ ज़्यादा देर तक रहती नहीं, आखरश जिंदा रहेगा भाईचारा देखना आखिर।

दोस्तों, अभी आप शायर आरिफ अली आरिफ से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आईना यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे इंदौर जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों, क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रुपये की लागत से श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की

योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है वंदे मातरम, गौरव गान की 150वीं सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत और स्वतंत्रता संग्राम का गौरव गान है, जिसे रचित हुए 150 यानी 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये कालजयी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा नवंबर 1875 में लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित ये गीत पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंगाली साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बाद में 1882 में इसके उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे शक्तिशाली नारा और प्रेरणा बन गया। अब बात करें 1950 की। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत घोषित किया। इस महान गीत की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। संसद से लेकर स्कूलों तक इसके माध्यम से नागरिकों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये केवल एक वंदना नहीं है, बल्कि इसमें भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, फसलों की संपन्नता और उसकी शक्ति का गुणगान किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत वीरों ने इसे गाते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसके अविस्मरणीय योगदान को हमने महसूस किया। किसी भी राष्ट्र का आत्मसम्मान उसके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीकों में निहित होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जगाने और जन जन में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले अमर गीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अंतर्मन से उपजा ये गौरवगान आज भी हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र आराधना की साक्षात ऊर्जा भरता है।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी CDC अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजी गई। ये चिकित्सा सहायता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है। CDC ने अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर बाड़बंदी, अवैध प्रशासन और कथित सीमा हत्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जल बंटवारे के मुद्दे, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और ड्रोन घुसपैठ जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापार, जहाजरानी, काउंसुलर मामले और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से लगभग 860 किलोमीटर भौगोलिक बाधाओं के

0: कारण बाढ़ रहित है। चार दिवसीय बैठक के समापन पर 11 जून को चर्चाओं के संयुक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछा ने 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री लमिछा ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे भारत में नेपाली समुदाय से मिलेंगे और अयोध्या की भी यात्रा करेंगे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में सांसद बिपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पौडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ये चुनाव पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक प्रावधानों के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए उन्हें इवान सेपेडा को उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाया है।
2: प्रारंभिक रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो देला एस्प्रियेला सबसे आगे हैं, जबकि वामपंथी सीनेटर इवान सेपेडा दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए 21 जून को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। इवान सेपेडा राष्ट्रपति पेट्रो की शांति वार्ता नीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबेलार्डो देला एस्प्रियेला और पालोमा वेलेंसिया अपराध और हिंसा से निपटने के लिए कड़े सैन्य रुख का समर्थन करते हैं। चुनाव परिणाम से कोलंबिया की सुरक्षा नीति, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीति और अमेरिका के साथ संबंधों की दिशा तय होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्राची वाजपेयी।
1: इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने ब्लूफोर्ट किले पर इजरायल का ध्वज फहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने IDF को लेबनान में कार्यवाही बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा गया है। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।
4: फॉर अ सेकंड टाइम रनिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैक टू बैक विनर्स ऑफ द टाटा IPL।
3: विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वे 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम ने गोवा के मरगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वियतनाम में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 10 पदक जीते। हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला एथलीटों ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण और 4x100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, जबकि पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता।
1: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $89.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेश

0: जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओ, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। संगीतकार हैं बाबुल। फिल्म का नाम नकली नवाब। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी। खंडवा ग्रामलोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल, शीला धंजे, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परंजल राय।

दिल ही तो है ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, गीतकार साहिर, संगीतकार रोशन। पसंद करने वाले श्रोता हैं बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग, सृष्टि गदरे। बिलहरी बड़खीरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल अफजल। ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता एकांश प्रिंस गवाड़कर। बदलापुर से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन गवाड़कर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसका संगीत तैयार किया है जानी बाबू कव्वाल ने और बोल हैं सबा अफगानी के। फिल्म का नाम है नूर महल। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। पुणे से प्रियंका पंकज आर्या, जरूर वरुण से बाबा साहब वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शुएब, मुस्ताबा खान, रऊफ शाहिद। कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

श्रोताओं, सुनिए हेमंत कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म नागिन का ये नगमा। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत को पसंद किया है सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही, सृष्टि राही, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जय तेग विरक, मीका विरक, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले, राजपुर से घिस्सु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी सोनाली, भगवान पुष्पा, नेहा एकता, अस्मिता, सौरभ कुणाल दिलवारे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए। फिल्म मधुमती का ये गीत, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी। अनुरोध आप सबका, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराज जहाँ। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी और रौनक सेन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है नीलकमल, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, गणेशपुर से हिना कैसर, वकील राही, फिरोज़ आलम, नाज प्रवीण, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी। और उनके परिवार के सदस्य इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है। तीन महुआ कापरखेड़ा से तुलसी राम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती ममता और गोमती साहू। यंग रेडियो लिसनर्स कुआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म है हलाकू। सुनना चाहते हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दातरिंगी से भागवत वर्मा,

इस गीत को सुनना चाहते हैं बेमेतरा से रामकुमार, विजय, अनूप और उनके परिवार के सदस्य नेपाल पहले से संघर्ष से। तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया, शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी, लक्की, रोली, श्वेता और परु।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरंग समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं।
1: का भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉरलस आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमारे परिश्रमी पशुपालक भाई बहनों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान और पशुपालक बंधुओं के पुरुषार्थ से राज्य शीघ्र ही मिल्क कैपिटल बनेगा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में

0: भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 10 पदक जीते हैं और भारत की महिला फुटबॉल टीम ने कल गोवा के मारगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीम का मुकाबला बुधवार को सेमीफाइनल मैच के ग्रुप ए की उप विजेता भूटान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।
2: फोन करें गीत सुनें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आपकी फरमाइश जुड़ी है टेलीफोन नंबर से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, जितना इंतजार आप करते हैं अपनी फरमाइश का।
3: हेलो,
2: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
3: हाँ, फोन करें गीत सुने।
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं खैरो कला से रमेश चंद्र नायक बोल रहा हूँ, जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से।
2: जी नायक जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है जी।
2: क्या चल रहा है?
3: और ठीक ठाक है। अभी तो अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो अभी जो है खेती पाती सब हो गई है और जो है ब्याह शादी भी अभी रुकी हुई है, जून में है। हाँ, तो अभी तो फुर्सत के दिन चल रहे हैं।
2: तो ये जो फुर्सत के दिन होते हैं, ये सिर्फ आराम करके गुजारते हैं या इसमें कोई काम करने की भी कोशिश करते हैं?
3: क्या मैडम जी, इतनी गर्मी पड़ी है साल रिकॉर्ड तोड़। पहले तो ना ईंट गुम्मा कहीं कुछ कर लेते गर्मियों में लोग, किसान लोग। इस साल जो है बहुत गर्मी पड़ी तो आदमी निकल नहीं पाए घर से।
2: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किए जा सकते हैं? बच्चों के साथ समय गुजारा जा सकता है, घर में क्या चीज चल रही है, क्या है, काम में तो बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं।
3: एक मिनट, हमारी सुनिएगा। ये घर का काम जैसे और से देखा करती, कहीं जो है पापड़ बनाना, कहीं मूंग की बड़ी बनाना, ये सब चलता रहता। अब लोग बागों का काम थोड़ी है, ये देहात में पड़ गए जो है। अब शहर में तो लोग बाग कुछ ना कुछ करते ही रहते।
2: काम कभी ऐसा थोड़ी कहता है कि हम देहात में हैं तो हमें आप नहीं कर सकते हो।
3: नहीं, और कोई काम नहीं रहता ना।
2: बात आपकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारा थोड़ा सा आग्रह कह लीजिए या सोच ये है कि घर के बाहर के काम और पैसे कमाने के काम ही नहीं होते हैं सिर्फ, घर के भीतर के भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर की महिलाओं के साथ रसोई घर में ही काम करें या हाथ बटाएं, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है यदि ऐसा करते हैं तो, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं।
3: पहले आप बताए जो है, दीदी जी आप बोल कौन रहे?
2: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
3: अच्छा, जी जी जी जी
2: जी, बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: तो मुझे सुनना है फिल्म एक महल हो सपनों में, सपनों का।
2: जी,
3: लता जी ने गाया है, फिल्म में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से ये भूले बुझेगा क्या।
2: पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
3: जी जी जी जी, धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ अमिता जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार।
1: मैं ग्राम उजान बोल रहा, गेंद्रलाल परिहार।
0: श्री परिहार जी कैसे हैं?
1: बढ़िया मैम जी।
0: क्या चल रहा है?
1: मैं बैठे हैं फ्री, ये तो फोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहा है।
0: क्या बात है जी। हम ये पूछ रहे थे कि जब आप लोग बिल्कुल फुर्सत में होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं लगता कि घर परिवार के साथ या बच्चों के साथ समय गुजारा जाए?
1: हाँ सब, अभी क्या हूँ, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सब बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। क्या
0: उनसे दोस्ती करने की, उनको जानने समझने की कोशिश की है?
1: मैं दो पोते हैं छोटे छोटे, तो
0: जी
1: उनके साथ में रहता हूँ, जब उनको समय बिताता हूँ उनके साथ में
0: समय बिताते हैं तो
1: जी।
0: कुछ खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं या?
1: अभी क्या, एक 5 साल का है, वो स्कूल जाता है, अभी छोटा है, 1-2 साल का है, तो उसकी छुट्टी चल रही है, अभी मामा घर गया है बड़ा वाला, तो छोटा है साथ में, तो उसके
0: अच्छा।
1: साथ खेलते रहते हैं दिन भर
0: हाँ,
1: उसको।
0: ये हम ऐसा लगता है कि जो फुर्सत का समय है उसे यदि हम अपने घर परिवार के साथ गुजारते हैं तो रिश्ते और बेहतर होते हैं, मजबूती से बन पाते
1: जी
0: हैं।
1: मैम,
0: तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: मैंने फिल्म का नाम है वो 7 दिन,
0: वो 7 दिन, और
1: इसका
0: गीत
1: गाना
0: तो
1: है
0: वो
1: कंगना कंगना।
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।
1: जी मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं
1: हरियाल जाटल, जिला सिपरी, मध्य प्रदेश।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया है। मौसम
0: बड़ी,
1: ठंडा है थोड़ा सा, कल पानी बस गया 2 दिन,
0: अरे वाह
1: और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी राहत मिल गई है, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो सिर्फ पानी गिरा या थोड़ा आंधी तूफान भी आया?
1: हाँ, आंधी भी आया, तूफान भी आया, आंधी ना पानी दोनों बराबर थे।
0: दोनों बराबर थे। कौन सा गीत कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: हमको सुना दो दिल तो पागल है,
0: इसका कौन सा गीत?
1: गाने के बोल भी यही है और फिल्म का नाम भी यही है।
0: पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत आप तक।
1: मैडम जी एक बात कहना चाहता हूँ,
0: जी बोलिए।
1: मैंने मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो, तो आजकल इससे मिस्टेक आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
0: क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
1: दिक्कत ये आ रही है कि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खोला और 6:30 बजे बंद हो गया। एक हफ्ते से माने रेडियो नहीं सुन पा रहा हूँ मोबाइल पर, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
0: प्रॉब्लम जब अपन मोबाइल से सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल की भी हो सकती है और नेटवर्क की भी हो सकती है। जरूरी
1: अब
0: नहीं है
1: ने,
0: कि वो
1: ने,
0: रे
1: नेटवर्क तो ये मान लो कि अपन एयरटेल का फोन चला रहे हैं, सादा वाला। हाँ
0: कई बार जैसे मौसम आपने कहा खराब है ना,
1: हाँ
0: मौसम का
1: हाँ
0: बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क पर, दोनों ही
1: हाँ
0: नेटवर्क पर, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो या आकाशवाणी के कार्यक्रम जिन ध्वनि तरंगों से आप तक पहुंच रहे हैं। तो
1: हाँ तो
0: थोड़ा
1: मैं
0: सा
1: कभी कभी 1 घंटा के लिए, कभी 2 घंटे, कभी 1 हफ्ते से परेशानी आ रही है सर।
0: उसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार पूरा बंद करके रीस्टार्ट कीजिए और जो आपका मोबाइल ऐप है जिसपे आप सुनते हैं उसे
1: हाँ जी
0: रिफ्रेश कर लीजिएगा। संभवतः जो दिक्कत आपको आ रही है वो नहीं
1: हाँ
0: आएगी। ठीक
1: ठीक है।
0: है।

0: फोन कर रही हूँ गीत सुने कार्यक्रम
1: जी। मेरा नाम मोलिना रॉय है, मैं सतना से बोल रही हूँ।
0: मोलिना
1: मोलिना
0: मोलिना, वाह, एक नए तरह का नाम है, तो इसका मतलब मीनिंग जान सकते हैं क्या होता है?
1: हाँ, वैसे तो संस्कृत में एक शब्द है मलिन,
0: जी
1: तो उसी का ही वर्जन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया।
0: जी जी जी
1: तो मोलिना का मतलब होता है मन की मलिनता को दूर करने वाला।
0: क्या
1: मोलिना,
0: बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी छोटी सी फुल्की की दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फुल्की आप घर पर ही बनाती हैं?
1: हाँ, सब मटेरियल में घर का बिना कलर यूज किए प्राकृतिक रूप का बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने का काम भी आप करती हैं और दुकान लगाने का भी आप करती हैं, या उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं?
1: मेरे परिवार, मेरी दो बेटियां और मेरे हस्बैंड और मैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फुल्की के साथ और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग आपके यहाँ खाना उसे पसंद करते हैं?
1: वो जलजीरा मेन, और
0: अच्छा,
1: फुल्की की क्रंचीपन,
0: हाँ,
1: और मेरे देने का तरीका, मतलब साफ सफाई में मैं विशेष ध्यान रखती
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: कि
0: जी
1: किसी
0: जी
1: प्रकार का गंदगी ना हो,
0: हाँ
1: जितना मुझसे बन सके।
0: जी जी जी
1: मैं जो सामान यूज करती हूँ वो अच्छे वाले करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए यदि मैं अच्छा सोच सकती तो और बच्चे जो आते हैं तो वो भी मेरे लिए, मेरे बच्चे समान ही हैं, तो
0: बिल्कुल
1: मैं
0: सही
1: उन्हें
0: बात है।
1: अच्छा दूँ।
0: जी, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चीज दे रहे हैं वो ताजी हो और
1: जी
0: स्वच्छ हो, तो उसका स्वाद तो जो होता है वो आता ही है, साथ ही सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। एक चीज और
1: जी
0: जानना चाहेंगे आप, कि आपको ऐसा लगता है किसी जगह विशेष पर दुकान होने से ज्यादा फायदा होता है चीजों में?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ
1: आप यदि कोई काम कर रहे हो और वो एरिया देखा जाए कि लोकेशन, मतलब वो कितना अच्छा काम करेगा,
0: जी,
1: और आप अपना काम भी यदि अच्छा रखेंगे तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
0: जी
1: फिर जहाँ धीरे धीरे आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है तो एक टाइमिंग बन जाती है।

0: के समय में वहाँ ये चीज मिल जाएगी।
1: जी
0: तो उसी समय मेरा जैसे बंधा हुआ कि मैं सिर्फ इवनिंग में खोलती हूँ और मॉर्निंग में मैं अपने घर का काम करती हूँ, दुकान का काम करती हूँ, बच्चे कॉलेज जाते पढ़ने के लिए, तो उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब वो आते हैं तो मेरा सारा सामान सेट कराते हैं, गाड़ी में रखवा के देते हैं, फिर मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपसे बात करके जानकर तो अच्छा लगा ही,
0: जी
1: लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि अपन किसी भी काम को यदि बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो यकीनी तौर पे हमें काम करने का एक संतोष तो मिलता ही है, हमारा नाम और हमारी चीज़ दूर दूर तक पहुंचती है। तो बताइए
0: जी
1: कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
0: बीर जारा का,
1: वीर जारा का कौन सा?
0: जी दो पल के यादों का कारवा।
1: पहुंच रहा है आप तक, धन्यवाद।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू।

0: फोन करें, गीत
1: हेलो।
0: सुने कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: जी नमस्ते।
1: इंदौर से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम। मैं
0: जी अनिल जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: बस अब छुट्टी का समय खत्म हो रहा है मैडम, कल से स्कूल चालू हो जाएंगे।
0: अच्छा, कल से ही शुरू हो रहे हैं?
1: हाँ हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं,
0: जी जी
1: तो एक्चुअली क्या 3 तारीख से 9वीं और 11वीं की एग्जाम है।
0: अच्छा, तो मतलब
1: इसलिए
0: ये टीचर्स के लिए छुट्टियां धीरे धीरे धीरे कम से कम ही होती चली जा रही हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपके हिसाब से आपकी नए सेशन के लिए?
1: बच्चे जो नए आएंगे उनको हमको उन्हें स्वागत करके और मोटिवेट स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है कि आप अभी पुरानी स्कूल में थे जब तक आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब ये बड़ी क्लास हो गई है तो इसमें तुम्हारा कोर्स भी बढ़ गया है, अब आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी पहले की अपेक्षा।
0: जी जी
1: क्योंकि मिडिल और प्राइमरी के बच्चे होते ही है, तो हाई स्कूल में थोड़ा कोर्स बढ़ जाता है।
0: बढ़ जाता है। और आपको ऐसा लगता है अनिल जी कि ये सब करके बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं?
1: मैडम कहना चाहिए ये टीचर को यदि उसको गाइड करता है तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को।
0: जी जी
1: ये वाली बात है।
0: हाँ, अच्छी चीज है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिर तेरी कहानी याद आई मैडम
0: जी। इसका कौन सा गीत?
1: दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते
0: जी नमस्कार,
1: ग्राम सुराना जिला से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी खान साहब कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, खेत में है मैडम।
0: क्या काम चल रहा है खेत में अभी?
1: अभी तो बस अगली फसल की जो सोयाबीन बोएंगे खेत में, बस उसी की तैयारी चल रही है। अब पर्याप्त पानी गिरेगा तो बोनी होगी।
0: बिल्कुल, तो बोहनी
1: हाँ।
0: के पहले जो खेत की तैयारी होती है वो किस चीज से कैसे करते हैं आप?
1: अभी तो गहरे जुताई जैसा कल्टीवेटर है, पंजा है, इस तरह करते हैं। हाँ
0: तो कितने दिन लग जाते हैं खेत की तैयारी में?
1: मैडम, अब तो क्या बहुत से साधन है, ट्रैक्टर के पास 2-4 दिन की मुश्किल से।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: ये यादगार फिल्म का सुनना है,
0: जी
1: लता जी की आवाज में गीत है, जिस पथ पर चला।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद।
1: ओके ओके, थैंक यू, है ना
2: जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: जी। कैसे हैं,
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अब इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर बाद गेहूँ बाकी मक्का का की कटाई होने वाली है। फरुखाबाद
0: फरुखाबाद का मौसम क्या कह रहा है?
1: का मौसम तो ये है, 45 तापमान पहुंच गया, 45 पे।
0: इस समय तापमान लगभग सभी जगह इतना ही हो रहा है, और जितना तापमान मीटर स्केल पे कि 45 है कि 42 है कि 43 है, उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है इस वक्त।
1: हाँ, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए, जैसे कलिंदे, खरबूजा, ककड़ियाँ, खीरा है, और उनका सेवन करना चाहिए। खीरा है तो उनका
0: जी
1: सेवन करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और पक्षियों को पानी रखना चाहिए, कहीं भी छत पे हो तो उनको पानी पर रखना चाहिए, दाना पानी रखना चाहिए, और भैंस पगु का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पानी टाइम से देना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये सब करना चाहिए या आप भी करते हैं?
1: करना चाहिए और करते भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज शुरुआत फिल्म का नाम है दिल,
0: दिल।
1: और गाने बोला ओ प्रिया प्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर, तहसील सरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या काम चल रहा है?
1: अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, फुर्सत है, अभी तो बारिश का इंतजार है।
0: बारिश का इंतजार है तो ये
1: जी
0: फुर्सत का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी कुछ नहीं, मोबाइल के जरिए से मोबाइल में फोन लगाते हैं, फिल्म संगीत सुनते रहते हैं, टाइम
0: अच्छा,
1: गुजर जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र
1: जी,
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: एक गाना है ना कुमार सानू की आवाज में, धर्मेंद्र और मिथुन दादा पे शर्मा गया है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वह उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEADV.ac.in पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस साल मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। स्वर प्रीति सागर के हैं, गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बेरड़ी से और श्रोता हैं राजेश, गुंजन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोले से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रोता हैं श्रद्धा, अभय, परम, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता धामनी से हैं, समय लाल, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता है हरदेव, बलविंदर, जयतेग और मीरा।

अगला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं राधिका, अनिष्का और तन्मय, साथ में है रोशन, कौशल्या, हेमलता, देवांगन, डिंपल। अगले श्रोता दतरेंगी से हैं, द्वारिका, किशोर, दीपक और झावेंद्र। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

पुण्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां का छठवां भाग।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरे मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरे को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है। और अब आगे।

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और वो उसका लड़का मुश्ताक। अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा?
0: सो तो हैं, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
1: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
0: सारी इस तलाक नामे को मानेगी?
1: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब।
0: फाता एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार? हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
0: तुम्हारे घर की बात है तुम जानो। हाँ मुझे कब जाना है?
1: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
0: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूँ।
1: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
0: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
4: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
4: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
4: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
0: क्या? ये आप क्या कह रहे हैं?
1: या अल्लाह।
4: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: फजी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाक नामा लाया हूँ।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, यह सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुश्ताक, मैं तलाक का संदेशा लाया हूँ और आप सारे को तलाक दे दे, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहां से चले जाएं, यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
0: मेहमान? मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
2: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात कर लेने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
1: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं, सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
0: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
0: अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: गुस्सा ना करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
0: ये गलत फैसला नहीं है अब्बू। जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
2: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।

0: अब्बू सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
1: जहां तक मैं जानता हूं सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते, इतनी जल्दी ना करो। हमें सिर्फ सोचना चाहिए।
0: अब्बू अब कोई फायदा नहीं है, मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
2: मुश्ताक जल्दी ना कर बेटा, सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी, कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही, तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले। तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
1: हाँ बेटा।
0: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
1: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
0: अब्बू आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
1: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो देखो बेटे, हम फाता और हसन भट्ट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
0: अब्बू आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
1: हाँ बेटे,
0: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाकनामा लाने को आदमी भेजा है, और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
1: देखो बेटे,
0: मैं तलाकनामे पर दस्तखत कर देता हूं। ये लीजिए।
2: मुश्ताक
1: बेटा,
2: मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे। मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे, दरवाजा खोल। अजी सुनते हो, मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।
1: क्या
2: मुश्ताक?
1: अरे मुश्ताक ऐसा ना कर बेटा। देख मैं पहले ही कह रहा था जल्दी ना कर। अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
2: मुश्ताक दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुल्म ना कर बेटा। बाहर आ जा, आ जा बेटा, दरवाजा खोल, खोल
1: बेटा। दरवाजा नहीं खोलेगा।
2: अजी कैसे नहीं खोलेगा, खोलेगा क्यों नहीं? मुश्ताक दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
1: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे, जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है। वो सारे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है, तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी। आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
2: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गई तो ना जाने क्या हो गया।
1: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
2: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता, हम क्या करें।

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ।

0: अम्मी अम्मी,
1: हाय सारे तुम।
0: अम्मी किसके तलाक नामे की बात कर रही हैं?
1: किसी की नहीं, तुम जाओ अभी, तुम जाओ।
0: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाक नामा है?
1: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई।
0: तो रो क्यों रही है?
1: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
0: बेवजह अपने नसीब को क्यों कोस रही है अम्मी?
1: ना कोसूं तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
0: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
1: ये तलाक नामा आया है।
0: तलाकनामा?
1: हाँ तलाकनामा, मुश्ताक ने भेजा है।
0: क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
1: नहीं कर सकता? मुश्ताक ने ऐसा ही किया है, उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
0: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता।

0: पाता, ये क्या हो रहा है? सारा क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाकनामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाकनामा भेजा है? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया है। अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, समझे?
0: अरे कोई इतनी आसानी

0: आसानी से तलाक कैसे दे देगा। मैं बात करूंगा मुश्ताक से, पूछूंगा कि उसने सारे को तलाक क्यों दिया।
1: खबरदार जो वहां गए, जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: फातिमा, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
1: अरे वजह जो भी हो, तलाकनामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
2: मुश्ताक,
0: सारे सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
1: अभी लाती हूँ।
0: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो।
1: हाँ
0: अरे कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई, एक लड़का ढूंढना है,
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ
0: जो अच्छा खाता कमाता हो, और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूँ।
1: देखता हूं, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूं।
0: लेकिन भैया, ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब तू जा।
1: जी जाता हूं, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: पाता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूं, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूं। मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है?
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूं।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है, और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: फाता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: फाता, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो, तुम मां होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम मां होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके।
2: वादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं। जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: अरे फाता, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं? या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मिया, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो तुम्हारे पास नहीं है।
2: फाता, पैसों से चैन नहीं मिलता, समझी? और अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
0: जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही दुख है मेरे काम से तो जाओ, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत भी नहीं है। अब जो करूंगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी।
2: या खुदा, तूने इसे किस मिट्टी का बनाया है? जाता हूं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में सिसकियों का भाग 6। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वो उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvance.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि गाँव गाँव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि उत्पादन भी बढ़े और खेत भी सुरक्षित रहे। प्रदेश में अभियान की शुरुआत आज रायसेन से लेकर राम गांव से की जा रही है। और वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

स्वस्थ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त भी होंगे, साथ ही हमारे कार्यक्रमों को भी सुन रहे होंगे। श्रोता मित्रों, स्वस्थ और मस्त रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत होती है सतर्कता और जागरूकता की। अब जैसे हम बात करें कि हम अपने हेल्थ नंबर की, तो ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखकर डिजिटल रूप से एक जगह लिंक करता है, जिसे आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यह नंबर आपको देश भर में एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देता है, जिसके जरिए आप डॉक्टर के पर्चे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण डिजिटली रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं भी कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे आभा पोर्टल या मोबाइल नंबर आधार कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। कोई भी नागरिक aabha.gov.in पर जाकर अपना आभा नंबर बना सकता है। इस नंबर से आप अपनी डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, सही जानकारियां हमें सुविधा और सुरक्षा दोनों में मदद करती हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता से उचित व्यवहार करके अनुकूल परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं। तो आप भी इस बात से तो सहमत होंगे, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक भेंट वार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजबी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूँ मनीष गजबी। आज की भगदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है।
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है। या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल, और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो ज्वाइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है। सभी का घिसता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। जो उस कैप्सूल के ज्वाइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं
1: जी।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है
1: जी।
2: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है। ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, जो एज के साथ साथ होता है।
1: जी जी जी, महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
2: जी जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं, तो वो बैठ के करती हैं
1: जी।

0: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है,
1: बिल्कुल,
0: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है, वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स

0: का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को पुरुषों को दे देती है और अपने ऊपर उतना ध्यान
1: नहीं देती,
0: नहीं देती है। तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो चीजें नहीं मिल पाती। ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग, खास तौर से लेडीज महिलाएं, उसको उतना ध्यान नहीं देती। वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है या पीरियड आना बंद हो गया, मीनो पॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती है कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा। पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े, अपने को रोज डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खा के ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं हो रहा।
1: जी जी जी।
0: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालती मारना है या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है, स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता
1: है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से संपर्क कर किससे की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
0: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है।
1: जी,
0: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं। नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, लेट जाइए। पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं, स्टैंडिंग एक्सरे। उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे।
1: जी,
0: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है। उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में, उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है।
1: जी।
0: और इसके अलावा घुटने का दर्द है ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठियापन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक RA फैक्टर की भी जांच होती है।
1: जी।
0: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं। तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट तो उसमें की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा ये है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना ये है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो काफी लेट स्थिति में आता है।
1: जी।
0: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है पर वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता।
1: जी।
0: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है तब शायद वो, चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपके घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से ही रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे और अगर कोई दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है, तो वो उसका भी इलाज ले और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी
1: जी
0: बिना ऑपरेशन के भी।

0: इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट, इसकी आवश्यकता आपने बताया कि लेट आने की वजह से होती है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी, नी रिप्लेसमेंट आजकल काफी आसान हो गया है
1: जी
0: और अपने इंडिया में, अपने भारतवर्ष में भी काफी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो अपने इंडियन जो अपनी बॉडी रहती है, भारतीय स्ट्रक्चर, तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आजकल आ रहे हैं इम्प्लांट, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसलिए आसान है आजकल, और यानी रोबोटिक भी हो रहा है, और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है।
1: जी
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना इम्प्लांट किया है तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है कि जो अपन ने इम्प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए, तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है।
1: जी
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए, आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम।
1: जी, और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है।
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले, उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है।
1: जी
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है, पूरा प्रोटीन, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 और फास्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व हैं जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाए
1: जी,
0: और वेट भी अपना कंट्रोल रहे
1: जी।
0: तो खान पान का इस रोग में, घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व है।
1: जी डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी,
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचे, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है, जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है, तो उसका भी इलाज लें।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये के बात सुनी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से, और आइए अब बारी एक प्यारे से गीत की है, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बायो हैकिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो अपने शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। विज्ञान, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव की ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य पोषण, नींद, व्यायाम और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उम्र को बढ़ाना और समग्र कल्याण करना है। बायोहैकिंग के मुख्य पहलू में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, पोषण में सप्लीमेंट का सही उपयोग, एडवांस मेथड से सही पहचान और इलाज। बायोहैकिंग इस सिद्धांत पर काम करता है श्रोताओं कि हम अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को हैक कर स्वयं के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकें, जिसमें डेटा से विश्लेषण करके छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके और फिर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। इस बात के साथ ही आइए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस समय गर्मी खूब पड़ रही है, तो बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पिएं, खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना जैसे पेय समय समय पर लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। सीजनल फलों का सेवन करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस आशा के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति दें। अपनी दोस्त दिव्या को स्वीकारें। नमस्कार।

अभी आप स्वास्थ्य दर्पण का लाभ ले रहे थे। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल की बात है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिएगा लोक भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है, प्रस्तुत है लोक भजन।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोक भजन। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी तड़दे की गाई गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रागिनी तरडे की गायी गजलें। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रागनी तरडे की गाई गजलें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डीजे।

दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ है। आज पूरा भारत आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए है। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। राग तेलंग

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक

0: करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के।

0: मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक ओसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक ओसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा, इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डो में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है।

0: कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं।

0: इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
2: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने लिया है अप्रैल फूल से, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। गीत लिखा है असरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और हमारे सभी श्रोताओं, आकाशवाणी परिवार और पूरा भारत आज सुमन कल्याणपुर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहला गीत पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मुरार ग्वालियर से कालीचरण यादव, राजकिरण, दीपक यादव, चांदी यादव, प्रमिला देवी यादव, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश फरियाद फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसको लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत के लिए हमें चिट्ठियां मिली हैं। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इन्होंने पसंद किया है बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और एसडी बर्मन ने संगीत दिया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत जब जब फूल खिले, इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन, नमन जैन, शुभम जैन, और सोनागिर दतिया से श्रेयांश जैन, विपुल जैन, इन सभी की पसंद पर। और इसी गीत को पसंद किया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी से, भागवत वर्मा ने। आप सभी की पसंद पर घर फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म में सुमन कल्याणपुर को। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और उषा खन्ना ने इसका संगीत तैयार किया है। ग्राम महसबाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुंग धाड़े, वाल्मीर धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर। और इसी गीत को पसंद किया है गुजरात नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कावले, नेहा भंडसे, सीमा रूबीहा, फजल पूनम, नैनवा और सुषमा सलीम ने। तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गाँव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvanced.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने सांस्कृतिक जगत को समृद्ध किया। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

लीजिए एक नज़र डालते हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर जो कि आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें कुछ चर्चा होंगी, फिल्मी गीत होंगे या आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत, 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकेगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:40 पर कार्यक्रम होगा आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन होगा 6:45 पर। सात बजकर 21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा लोक रंग, मंडी मौसम और कुछ गीत। विश्व दुग्ध दिवस पर कुछ बातचीत आप सुन सकेंगे। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला।

सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10 बजे आपकी फरमाइश होगी और रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का राग बागेश्वरी में वायलिन वादन आप सुन सकेंगे। इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का अब समापन होता है। शाम 5:02 पर मीडियम वेव पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारा कार्यक्रम होगा DTH पर।

0: हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से
1: बिल्कुल
0: चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई
1: नहीं, वो
0: थी।
1: बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं
0: और इस
1: वो।
0: कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को
1: जी
0: बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके
1: गुनगुनाया,
0: गानों को जिया हमने। मुझे याद
1: बिल्कुल
0: है रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के,
1: जी
0: आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है,
1: जी
0: उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है,
1: बिल्कुल सही
0: ऐसा
1: बात है,
0: महसूस होता
1: बिल्कुल सही बात
0: है
1: है
0: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया, और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के
1: जी।
0: साथ गाया।
1: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हमारी सखी ने भी
0: कुछ
1: एक
0: लिखा है,
1: लिखा
0: बताइए
1: है,
0: मेरी सखी ने क्या लिखा है।
1: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना।
0: बहाना।
1: दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि
0: हाँ
1: शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज़ दी है।
0: आवाज़ थी बिल्कुल, और उनकी आवाज़ हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो
1: जी
0: विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं,
1: जी
0: और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से
1: जी
0: उन्हें बहुत बहुत
1: बहुत
0: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे
1: जी
0: हैं।

0: तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते
1: जी।
0: हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता।

0: क्षण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता?
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन

0: विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की, तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
1: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत तेरे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2000 भी देता

0: तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
1: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलो, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
1: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुरभाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
4: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों

0: की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
4: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
3: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
4: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
3: शुभकामनाएं
4: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
3: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
4: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
3: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है, और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीज़ों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आँख खुलती है, वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए ना।
1: और
0: हाँ
1: हाँ उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं, और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
1: जी,
0: है ना।
1: और उसका कारण भी है मोबाइल।
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये
1: जी
0: हमारी जिंदगी बन गए
1: जी
0: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं नहीं
0: ये
1: नहीं
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
1: जी
0: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट

0: फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे। तो माता पिता तो खैर बच्ची की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था।
1: लगता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा है सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे। और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें
0: जी
1: छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं, जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना, और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर
0: लिखकर
1: बात लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है इस दिन का। आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ, यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है, और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी

0: हाँ
1: तो
0: देखिए,
1: तो
0: अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबीयत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर
0: नुकसान
1: रहा है
0: दें।
1: या नहीं कर
0: हाँ,
1: रहा
0: कुछ
1: है।
0: समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात
1: हाँ
0: होती
1: ये
0: है।
1: बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे
0: जी
1: कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं।

0: ही बनना
1: नहीं
0: चाहिए,
1: बनना है।
0: हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि
1: हाँ, हो
0: हमारे
1: सकता
0: लिए
1: है,
0: कुछ लोगों को
1: लेकिन
0: दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल
1: बिल्कुल
0: ये नहीं, वहम नहीं होना
1: वहम
0: चाहिए
1: नहीं
0: हमें।
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज़ है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती है,
0: अरे हमारी
1: ये
0: तो ये
1: उन्होंने
0: भी चाय के शौकीन
1: लिखा
0: है
1: है।
0: मंजरी।
1: जी, और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, वो
0: बिल्कुल
1: बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दे
0: पिला
1: सकते
0: सकते हैं,
1: हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे
1: हाँ
0: हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि
1: जी,
0: मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही
1: जाए।
0: चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिख कर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी एक कप, आलू
0: चाहिए
1: आधा कप, आलू 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भुने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं।

0: हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे,
1: हाँ जी
0: तब
1: हाँ
0: जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
1: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
1: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजिली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं, और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजिशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं, तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
1: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है, और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
1: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स
0: जी
1: का काम है,
0: जी
1: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट
0: पेट
1: में।
0: में।
1: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशन होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं, वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
1: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
0: जी
1: उसके पहले, मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
0: रास्ता
1: मसाज,
0: निकालेगा।
1: हाँ, मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं, जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
0: छोटे बच्चों के लिए
1: छोटे
0: ये भी
1: बच्चों के लिए
0: तरीका है।
1: एकदम। हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके एक या दो दांत या चार दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
0: बिल्कुल।
1: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाले कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
0: ये हम सभी के मामले में करें,
1: हाँ,
0: चाहे बच्चे हो
1: बच्चे
0: चाहे बड़े
1: हो, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
0: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए,
1: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
0: चॉकलेट,
1: चॉकलेट
0: आइटम,
1: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
0: ओके,
1: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
0: तो हमको कहीं बाहर
1: क्रेविंग
0: नहीं,
1: नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
1: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
0: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
1: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ,
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक, उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है।
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है।
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी
0: बिल्कुल
1: हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है।
0: जिसकी हमने चर्चा की,
1: एग्जैक्टली।
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ,
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको
0: अरे
1: डेंटल
0: बाप रे,
1: एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है।

0: या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है, पर
1: अच्छा
0: असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर
1: नीचे की
0: होता
1: तरफ
0: हो,
1: होता है। हाँ
0: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल
0: जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात
0: नहीं,
1: है।
0: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटीज शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमिडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है। नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते
1: हाँ
0: बैठे हो।
1: जी
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय, 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं, तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल। और
0: जी,
1: सुबह उठते ही ब्रश करना
0: ब्रश करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: होता
1: है।
0: है।
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
0: सही,
1: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
0: अखरोट
1: से,
0: जैसे।
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के
0: है।
1: बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी। तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके
0: अच्छा?
1: बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है, महबूबा।
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है। तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: Yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: Yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: Exactly.
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: Exactly. मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: Yes.
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरियाज होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह

0: बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा रहा
1: बिना
0: हूं,
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पर प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशन की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन। खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: तो
1: बैलेंस
0: वो
1: करे।
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है, नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास
1: जाते नहीं
0: नहीं
1: है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है, ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके,
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनी।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम उपस्थित हैं अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे। पहले न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर लिखे एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा, वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रूपये था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदा नीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे और वियतनाम के दनांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी को आसमान की तरफ ताकने की आदत हो गई है ना। मन में बस एक ही ख्याल चलता है कि कब घने बादल घिरें और कब बारिश की पहली फुहार इस तपती ज़मीन को भिगोए। दोस्तों, मौसम के इसी सुहाने इंतज़ार के बीच आज जून महीने की पहली तारीख है। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो हमारे मन में एक नई उम्मीद, नए लक्ष्य और नया उत्साह जन्म लेता है। और दोस्तों, आज का दिन तो हम युवाओं के लिए बहुत ही गहरा और बेहद खास संदेश लेकर आया है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस पर, और इसी के साथ चर्चा करेंगे डिजिटल जीवन शैली और इसके बीच हमारे स्वास्थ्य विषय पर। आइए आज के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जिससे हमारा वजूद है। एक पिता की उंगली पकड़कर ही हम दुनिया को देखना सीखते हैं। पिता का संघर्ष और उनका अनुशासन ही हमें जीवन की कठिन डगर पर सीधे खड़े रहने का संबल देता है। कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे वैश्विक अभिभावक दिवस पर उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये बेहद प्यारा और आत्मीय गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म मैं ऐसा ही हूँ से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत पापा मेरे पापा। गीतकार थे समीर और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। दोस्तों इस गीत के बोल सीधे दिल को छू जाते हैं। सचमुच पिता का साया जीवन की हर धूप में एक ठंडी छाव की तरह होता है। साथियों आज पूरी दुनिया में वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करना है और बच्चों के पालन पोषण में उनके योगदान, त्याग और समर्पण को याद करना है। माता पिता बच्चों के प्रथम शिक्षक, मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं। वे बच्चों को प्रेम, सुरक्षा, संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं। दोस्तों यह दिवस हमें अनेक निस्वार्थ प्रेम और अथक प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। पिता के इस अनमोल साए के साथ माँ की ममता और उसके निस्वार्थ त्याग की भी तुलना नहीं की जा सकती। जब भी हम घर से दूर होते हैं तो माँ की बातें ही हमारा संबल बनती हैं। आइए सुनते हैं फिल्म नीरजा से सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये बेहद भावुक कर देने वाला गीत।

हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है। माँ के इसी निस्वार्थ स्नेह और जीवनदायी पोषण से जुड़ा है हमारा आज का अगला पड़ाव, जो सीधे हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती से वास्ता रखता है। 201 जून वैश्विक अभिभावक दिवस के साथ साथ पूरी दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि हम सब अपनी सेहत में दूध के महत्व को समझ सकें। दोस्तों, हमारी संस्कृति में, हमारे आहार में दूध का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है, परंतु आधुनिकता के इस दौर में हमारी आदतें कुछ बदल सी गई हैं। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब माँ ममता के साथ दूध का ग्लास थमाने के लिए हमारे पीछे भागा करती थी। आज जब हम समझदार और आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो विडंबना देखिए कि हमने उसी जीवनदायी और संपूर्ण आहार को अपने दैनिक जीवन से अनजाने में ही दूर कर दिया है। आजकल हम युवाओं के बीच चाय, कॉफ़ी, तरह तरह के फ्लेवर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें लगता है कि देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी हो या ऑफिस का काम करना हो तो कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स ही सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये कृत्रिम साधन हमारे दिमाग को कुछ देर के लिए तो एक्टिव कर देते हैं, मगर लंबे समय में ये हमारे पाचन तंत्र और हमारे सोने के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दूध को हमारे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड माना गया है। इसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम। आज बहुत कम उम्र में ही हम युवाओं में थकान होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, असमय बालों का सफ़ेद होना जैसी समस्याएं दिख रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम प्राकृतिक पोषण से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, रोज केवल एक ग्लास दूध हमारी इन बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। विशेष रूप से रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें गहरी और सुकून भरी नींद देता है। तो आज इस विश्व दुग्ध दिवस पर हमें ये समझना चाहिए कि विज्ञापनों के बहकावे में आकर किसी भी फैशनेबल ड्रिंक को अपनाने से बेहतर है कि हम अपने पारंपरिक और शुद्ध पोषण की तरफ वापस लौटें, क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सकता है। साथियों, हमारी सकारात्मक सोच और हमारे भीतरी स्वास्थ्य का सबसे सीधा असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। जब मन में उमंग हो और विचार शुद्ध हो तो आंखों की सजीवता देखते ही बनती है। आंखें सचमुच हृदय का वो द्वार है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। आइए सुरों के सफर को एक ऐसी रचना से जोड़ते हैं जो सीधे रूह को छू लेती है। सुनते हैं फिल्म माय नेम इज खान से शफकत अमानत अली की आवाज में यह गीत, तेरे नैना।

दोस्तों आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज़ में गीत तेरे नैना, जिसमें संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। इस मधुर गीत का सुकून सचमुच मन को शांत करता है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हमारे स्वास्थ्य और हमारी आंखों के सुकून के सामने एक चुनौती खड़ी है। दोस्तों शरीर पोषण की बात तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी रोज़ की आदतों पर बात ना करें। आइए अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जो सीधे तौर पर हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी डिजिटल जीवन शैली। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी की ऑक्सीजन बन चुके हैं। सुबह खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले फ़ोन ढूंढता है और रात को सोते समय आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन होती है। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, काम वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है, दोस्तों से बातचीत मैसेजेस पर हो रही है और मनोरंजन के लिए भी हमारे पास ढेरों ऐप्स हैं। तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और तेज़ बना दिया है, इस बात में तो कोई राय नहीं, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अति उपयोग ने हमारे स्वास्थ्य के सामने कुछ बहुत गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार कई घंटों तक लैपटॉप पर काम करने और मोबाइल देखने के बाद आपकी आंखों में जलन होने लगती है या सिर भारी हो जाता है? चिकित्सा विज्ञान में इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। इसी तरह जब हम लगातार अपनी गर्दन झुकाकर फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे डॉक्टर अब टेक्स्ट नेक कहने लगे हैं। इसके कारण बहुत कम उम्र के युवाओं में भी गर्दन और पीठ के दर्द की शिकायतें आम होती जा रही हैं। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य तो एक तरफ है, लेकिन इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर और भी ज़्यादा गहरा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें, उनकी यात्राओं की वीडियो देखकर हम अनजाने में ही अपनी ज़िंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, सिर्फ हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं। इस भावना को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, जो हमारे भीतर एक अनजाना तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। लेकिन साथ ही इस आभासी चमक दमक के कारण खुद को उदास या निराश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ किसी के जीवन का पूरा सच नहीं, बल्कि सिर्फ एक चुनिंदा और सजाया हुआ पल होती है। कैमरे के पीछे हर इंसान के अपने संघर्ष और अपनी चुनौतियां होती हैं। इसीलिए किसी और की रील्स को देखकर अपनी रियल ज़िंदगी को कमतर आंकना बिल्कुल सही नहीं है। आपकी जीवन यात्रा अनूठी है और आपकी रफ्तार आपकी अपनी है। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी स्क्रीन को मत सौंपिए, क्योंकि आपका वास्तविक जीवन इस वर्चुअल दुनिया से कई ज़्यादा सुंदर और मूल्यवान है। लेकिन साथियों इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें तकनीक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज के समय में तकनीक से दूर होना व्यवहारिक नहीं है। हमें बस एक चीज़ सीखनी है और वो है संतुलन। तकनीक हमारी सुविधा के लिए बनी है, हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना है। इस संतुलन को हम अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक नियमों से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला नियम है 20-20-20 का नियम। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल पर लगातार काम कर रहे हों तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी भी प्राकृतिक चीज़ या दीवार को देखें। इससे हमारी आंखों की मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। दूसरा नियम है नो स्क्रीन जोन बनाना। अपने घर में कुछ जगह और कुछ समय ऐसा तय कीजिए जहां मोबाइल पूरी तरह वर्जित हो। जैसे भोजन करते समय फ़ोन बिल्कुल दूर होना चाहिए। जब हम फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर नहीं होता, जिससे हमारे शरीर को उसका पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तीसरा और सबसे जादुई नियम है डिजिटल सूर्यास्त, यस डिजिटल सनसेट। रात को सोने के समय से कम आधा या एक घंटा पहले अपने फ़ोन और लैपटॉप को खुद से दूर कर दीजिए। फ़ोन से निकलने वाली जो कृत्रिम रोशनी है वो हमारे दिमाग को सोने का सिग्नल नहीं देती, जिससे हमारी नींद अधूरी रह जाती है। जब आप सोने से पहले फ़ोन से दूरी बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी गहरी और सुकून भरी हो गई है। साथियों सोशल मीडिया पर हमारे कितने फॉलोवर्स हैं या हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं या बात से कई कम महत्वपूर्ण है, असल ज़िंदगी में हमारे चेहरे पर कितनी मुस्कान है और हमारे अपनों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है।
वर्चुअल दुनिया के इस मानसिक दबाव से थोड़ा विराम लेकर जब हम वास्तविक दुनिया की सादगी को अपनाते हैं ना दोस्तों, तो दिल अपने आप मुस्कुरा उठता है। आखिर यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसका हमें हर पल आभार मानना चाहिए। आइए सुनते हैं हम युवाओं के दिलों में जीवन के प्रति एक नया उत्साह जगाता फिल्म डियर जिंदगी से ये बेहद खूबसूरत और सकारात्मक गीत लव यू जिंदगी।

चुनौती आसान लगने लगती है। अपनी सेहत, अपने विचारों, अपनी जीवन शैली से प्यार करना ही वास्तविक जीवन है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए जानते हैं आज की रोजगार सूचना। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। 10वीं कक्षा के साथ ITI प्रमाण पत्र या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है। आवेदन 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून है। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता को इजाजत। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर युवाओं की तरंग, युवाओं की आवाज़, कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार।

देश परदेश इस फिल्म के लिए श्रोताओं आपने सुना किशोर कुमार, अमित कुमार और मनहर की आवाज़ों में ये गीत। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन था।

लूटमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत था। और श्रोताओं, अगला गीत प्रेम बंधन फिल्म से लिया है हमने, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया, आनंद बख्शी साहब ने लिखा और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का।

खुद गर्ज फिल्म का ये गीत आपने सुना नितिन मुकेश, साधना सरगम की आवाज़ों में, इंदिवर और फारूक कैसर के बोल, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर, और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में रात्रि 10:30 पर।

मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज शाम 6:30 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत। शाम 7:21 पर कृषि जगत में कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन पर जानकारी देंगे डॉक्टर एसबी अग्रवाल। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत, स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन। और रात्रि 10:30 सुनना ना भूलिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, और अब आइए आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल प्रातः 5:55 पर पहली सभा आरंभ होगी। 6:05 पर भक्ति संगीत वंदना चिंतन का प्रसारण 6:30 पर होगा। श्री रामचरित मानस गान 6:35 पर। 6:45 पर कृषि सामायिकी। सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर।

0: श्रोताओं, ये थी कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस,
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी

0: ही पहलुओं पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा, वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे। और राजधानी भोपाल में मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और W. सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा हैं।

0: तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
2: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
2: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना। तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना। अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
0: जी।
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
0: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का

0: आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक

0: एक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIIT NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप

0: सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी।
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। क्या आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो फिर देर ना करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपने सुना शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।
1: आजकल
2: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल, मोदी सरकार के निर्णयों ने बदली देश की तस्वीर, आम लोगों की तकदीर। आलेख है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे कर रही है। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने खुद को सिर्फ सत्ता संभालने तक सीमित न रखकर योजनाओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए देश की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया है। इन नीतिगत बदलावों ने सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, जिससे लास्ट माइल डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की व्यवस्था बेहद मजबूत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं अन्य धार्मिक कार्यों में सरकार की सहभागिता से जनता में नई धार्मिक चेतना का संचार हुआ है। वैसे तो सरकार के सभी कार्यों का जिक्र करना असंभव है, लेकिन देश और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख क्षेत्रों और योजनाओं का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका सशक्तिकरण है। लंबे समय तक महिलाओं को केवल एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें नीतियों और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाली एक निर्णायक मतदाता बनकर उभरी हैं। महिलाओं को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही सुरक्षित मातृत्व अभियान और मातृवंदन योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं की देखभाल की गई और मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि की गई। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समाज में एक नया अधिकार और सम्मान दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके प्रति नजरिए को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने केवल सामाजिक सुधारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि युवाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई योजनाएं लागू की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिए गए। चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे छोटे व्यवसाय करने वालों को इससे बड़ा सहारा मिला और युवा नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी देने वाले बन गए। वहीं टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और फंडिंग सपोर्ट के दम पर आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां करोड़ों युवा अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम की पहल से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में भारी निवेश आया, जिससे भारत आज दुनिया का एक प्रमुख मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनकर उभरा है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोरोना महामारी के संकट के बाद रेहड़ी पटरी और पटरी दुकानदारों को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए बिना गारंटी का लोन दिया गया, जो बेहद मददगार साबित हुआ। सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी मोर्चों पर काम किया, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के जीरो बैंक बैलेंस खाते खोले गए, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। कैंसर और हार्ट जैसी गंभीर सर्जरी के खर्च से बचकर लाखों परिवार कर्जदार होने से बच गए, जिससे मृत्यु दर में कमी आई और लोगों का जीवन खुशहाल हुआ। वहीं स्वच्छ भारत मिशन एक सफाई अभियान से बढ़कर सामाजिक आंदोलन बन गया। देश भर में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ। शहरों के बीच स्वच्छता की होड़ शुरू हुई और रसूखदार लोगों से लेकर आम जनता तक में जागरूकता आई। जल जीवन मिशन अभियान से महिलाओं को पानी के लिए करने वाली कड़ी मेहनत से मुक्ति मिली और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में भी भारी कमी आई। वहीं पीएम आवास योजना ने बेघर लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान का मालिक बनाया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए हर साल उनके खाते में 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के भीतर सरकारी सेवाओं और भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत को डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में वैश्विक लीडर बना दिया है। आज रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान ले रहे हैं। इन 12 वर्षों का सफर ये साफ करता है कि नीतियां अगर सही नीयत से लागू की जाएं, तो वे देश की तकदीर बदल सकती हैं। आजकल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमाज। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है गेहूं उपार्जन के संबंध में। हाल ही में संपन्न हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है।
1: मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूँ खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूँ खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मेट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये गेहूं खरीदी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान प्रेषित किया गया है। इसका मतलब हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है।
0: हमारी दूसरी खबर विदिशा से है, जहां रबी विपणन वर्ष 2026-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जिले में 68,200 किसानों से 6,51,836 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पेशे विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 26-27 में 174 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से खरीदी की गई है। जिले में 68,200 किसानों में से 6,51,836 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा उपार्जन कार्य की निरंतर समीक्षा करने से किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिली है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुबाई ने बताया कि गेहूं विक्रय हेतु जिले में कुल पंजीकृत किसानों में से 74,621 किसानों अर्थात 90% किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय किया है। 28 मई तक गेहूं की खरीदी होने के पश्चात उपार्जित गेहूं के परिवहन का कार्य अभी भी जारी है। अब तक खरीदे गए कुल गेहूं में से 5,77,598 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है, जो कुल खरीदी का लगभग 88% है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1,470 करोड़ रुपए ईपीओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिले में बारदाने की आपूर्ति निरंतर और पर्याप्त होने से उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन आसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहां किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, खाना और सस्ती सुविधा देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौजूदगी और पड़ोसी जिले शिवपुर में चीतों के आने के बाद जिले में होम स्टे टूरिज्म को पंख लग गए हैं। शिवपुरी जिले के किसान, ग्रामीण और फार्म हाउस संचालक अब तेजी से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं। पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, देसी खाना और सस्ती सुविधाएं देने के लिए ये होम स्टे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। फिलहाल जिले में 4 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें हाथौद ग्राम में चल रहा होम स्टे पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन होम स्टे में रुकते हैं। इसके बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के साथ साथ सिंधिया घराने की ऐतिहासिक छतरियां, भदिया कुंड और भूरखो जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जिले में कई होटल पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब होम स्टे का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम हाथौद में स्थित फार्म स्टे बैरागढ़ लिविंग के संचालक जसमीत ग्रेवाल ने बताया कि हमारे यहाँ पर कई देसी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देसी स्थानीय व्यंजन जैविक खेती से तैयार अनाज व सब्जियों से तैयार किए जाते हैं। जिला पर्यटन प्रबंधक देव सोनी ने बताया कि शिवपुरी में होम स्टे को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद पर्यटकों को होटल के मुकाबले कम रेट में बेहतर और प्रामाणिक सुविधाएं देना है। उन्होंने बताया कि साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन होम स्टे के संचालन से अब युवाओं को गाइड, रसोईया और हाउसकीपिंग का रोजगार भी मिल रहा है। शिवपुरी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और होम स्टे इस दिशा में नया अध्याय लिख रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है सीधी जिले से, जहां जिले के सेवारत सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक नजीर पेश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: देश की सुरक्षा में निरंतर समर्पित सैनिक सीमाओं पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अक्सर अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। इन तमाम तथ्यों को लेकर जिला प्रशासन सीधी ने एक अभिनव पहल की है। हेलो सीधी, जय जवान एक समर्पित जिला स्तरीय सहायता एवं शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से सैनिक, उनके परिजन सीधे जिला प्रशासन विकास से संपर्क कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी इन उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8103550045। व्हाट्सएप नंबर है 8103550045। आधिकारिक वेबसाइट cd.nic.in। हेलो सीधी, जय जवान केवल शिकायत निवारण परियोजना नहीं बल्कि सैनिकों के सम्मान, त्वरित सेवा वितरण एवं संवेदनशील प्रशासन का एक अभिनव मॉडल है। आने वाले समय में जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर विकास की यह सोच दर्शाती है कि तकनीकी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के समन्वय से विशेष वर्गों के लिए प्रभावी और सम्मानजनक सेवा तंत्र विकसित कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
0: हम चलते हैं सीहोर जिले की तरफ, जहां इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत किया गया नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
5: सीहोर जिले में इन दिनों जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के बाद

0: वातावरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर बालागुरु के और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्चना यादव के निर्देश पर जिले में नवाचार के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। संकुल अंतर्गत ऐसे शाला त्यागी बच्चे जो किन्हीं कारणों के चलते शाला में प्रवेश से वंचित रह गए हैं, अक्षर साथी के माध्यम से शाला में प्रवेश संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। इससे अक्षर साथी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन बच्चों के गैप्स को दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है। जिले में गृह संपर्क अभियान के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शाला खुलते ही ये शाला में नियमित रूप से आना प्रारंभ करें एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकें। जिले में सामाजिक चेतना केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों एवं अपने साथियों को ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर माताओं से सरकारी शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने प्रयास लगातार किए जा रहा है। इस बारे में जिले के डीपीसी श्री आर उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
1: जिले में चलाया जा रहा अभियान 2.0 शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय एवं टीओ मैडम के मार्गदर्शन में जो शिक्षा से वंचित विद्यार्थी कक्षा में अध्ययनरत नहीं है उन बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जिले के प्रत्येक विकास खंड में डाइट एवं जनपद शिक्षा केंद्र के टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 100% हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे।
0: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत संसाधन युक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग 51 स्कूलों का विलय कर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सरकारी संस्थानों के सही उपयोग करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
3: शहडोल जिले में ऐसे 51 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां छात्र संख्या 10 से भी कम है। इन स्कूलों को बंद कर यहां पढ़ रहे बच्चों को नजदीक के ही शासकीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ सिंह ने बताया कि विकास खंडवार स्कूलों को चिन्हित किया गया है। शासन स्तर से निर्देश मिलते ही छात्र व स्कूल सामग्री को नजदीक के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। चिन्हित किए गए 51 प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या नाममात्र की है, जबकि हर स्कूल में एक से दो शिक्षक तैनात हैं। कम छात्र संख्या होने के बावजूद इन स्कूलों के संचालन, शिक्षकों का वेतन व रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। सबसे अधिक 15 स्कूल गोपारू विकास खंड में है, जबकि सुहागपुर और व्यवहारी विकास खंड में 11-11 प्राथमिक स्कूल है। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों के विलय से बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें अच्छा शैक्षणिक माहौल और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शाजापुर जिले से, जहां गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 28 मई को संपन्न हुई, जिसमें जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पारशर।
4: समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड गेहूं खरीदी शाजापुर ने उज्जैन संभाग में हासिल किया दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संचालित समर्थन मूल्य खरीदी अभियान के तहत शाजापुर जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। 9 अप्रैल से 28 मई तक चले इस अभियान में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि भी बढ़ाई थी, जिससे कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। शाजापुर कलेक्टर रिजु बापना के मार्गदर्शन में जिले के 93 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी, तोल, परिवहन तथा भीषण गर्मी के बीच किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था की गई। जिले में इस वर्ष 4,27,417 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। उत्कृष्ट प्रबंधन और किसानों की सक्रिय भागीदारी के चलते शाजापुर ने गेहूं उपार्जन में उज्जैन संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला आपूर्ति अधिकारी रिजू बापना के अनुसार खरीदी के साथ साथ भुगतान प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी गई। अब तक 67,000 से अधिक किसानों को 1,004 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। समय पर भुगतान और सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था ने किसानों का विश्वास और मजबूत किया है। शासन और किसान हितैषी नीतियां, जिला प्रशासन के सतत निगरानी तथा उपार्जन केंद्रों पर किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिले में इस वर्ष गेहूं उपार्जन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पारशर की रिपोर्ट।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी
2: इन द रीजन। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने

0: थोड़ी ही देर में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक

0: नेता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
1: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके वो समिति

0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुसिया मध्यप्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशील देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगरमालवा जिले में आज दोपहर तेज धूलभरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर आदित्य गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
0: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

लो भैया हरो, 1 जून हो गई आज, अब बचे केवल मोनीमोड़न की छुट्टी के 15 दिन। सो हम आ गए बैलगाड़ी में बैठ के तुम्हारे सबरे भांजी भांजियन को लेके तुम्हारे घर है, तुम सब जनन से मिलवे के लाने हैं। सो कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे सबई किसान भैया बिन्ना जिज्जी भौजी हरन को रजनी बहन की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। गर्मी तो देखो बेजा पड़ रही, ना मैं हर को बेहाल सो होगा, और धरती माता को ताप है कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा हो, और ऐसी समस्या है कि जाको हल तो को की एक जनन की जिम्मेदारी तो है नहीं है, सबई को जाको अब मिलजुल के प्रयास करना पड़े, तब जाके कछू हमें बड़ा ताप से राहत मिले। बड़े भैया के लिंगा गए थे सुबह तो देखो परे परे बस काय नेक पना बना दो, काय नेक लस्सी दे दो, काय नेक मठा दे दो, भौजी दिन भर परेशान हो जाए। और कहें बस है ना, तो दिन भर गर्मी सतात रहे, हमें नहीं लगता गर्मी, हम दिन भर चौका में बैठे रहेंगे। सो कहने लगे अरे नेक बना दो, थोड़ी हमें राहत मिल जाए, कितनी गर्मी पड़ रही हैगी। सो बोलनी आ हाँ गर्मी अब ना पड़े जेठ में, गर्मी तो पड़े पूस में है ना, परे रहो तुम परे परे, कहूँ पना मांग रहे तो कहूँ हमें मठा दे दो, तो कहूँ लस्सी दे दो। भैया हंसन लगे, बोले अब क्या करें, थोड़ी तो कले देखो ठंडक चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे हम बना तुम बनाती हो, हमारे लाने से तुम भी पी लेती, अगर अपने लाने तो बनाओ पियो नहीं। सांची भैया जो तो बहुत अच्छी बात लगी भैया की, कि भी देखो ई के लाने कह रहा है कि जिसे भौजी भी पिया जाए संगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि दिन भर चौका में बैठी रहे तो उन्हें गर्मी लग जाए, उन्हें कोई नुकसान करे। जो बात तो सही है हमारी भौजी, अरे हम और उनकी भी तो आदत ऐसी होते है कि हम और जो जो काम में लग जाते हैंगे सो फिर हमारे अपनों ध्यान नहीं रख पाते, सबको तो खुआत पियात रहेंगे। लेकिन भैया जो तो खूब गई, एक तो दो जेठ पर गए हैं, और अब देखो जरा धूप चमके जैसे अंगारे, और पसीना में भीगे हैं सबरे बेचारे, छाँव की चाय में इतने उतने तरसें, आस लगाएं कि 4 बूंद ते भी बरसें, पंखा कूलर एसी भी नहीं दे पा रहे को चैन, और हाथ पांव सब जल रहे, कहूँ जिया जले कहूँ नैन, क्या करें भैया खूब ही तप गौ नौ तपा, अब थोड़ी राहत मिल जाए है ना, खे कि नहीं भैया। अब बात तो सांची है, बेहाल तो हो गए नौतपा में, लेकिन भैया नौतपा तब वो भी तो सोई जरूरी है, कैसे कि जो उन जो नौतपा ना तपे सो, और फिर धरती में खूब सारे कीड़ा मकोड़ा नहीं भर जे हैं, ऐसी नहीं कही जाते हैगी कि दो मूसा दो कातरा, दो तीड़ी दो ताओ, और दो की वादी जल हरे, दो बिस्वर दो बाओ, ऐसी कही जाते हैं कि नौतपा के पहले दिना जो जो लू ना चली सो चूहा बढ़ जाते हैंगे, और तीसरे चौथे दिना जो जो ना तपो सो फिर वे जो टिड्डा हैंगे सो उनके अंडा नहीं मरत हैंगे, सो बेसोई बढ़ जाते हैंगे, और बाकी बाद फिर आगे के दो दिना नहीं तपो सो फिर कहने लगत कि जैसे ही पानी बरसे सो फिर बुखार, और फिर और भी दूसरे संक्रामक रोग हैं, उनके कीटाणु भी बढ़ जाते हैंगे, सो उनके नष्ट होवे के लाने नौ तपा तब वो जरूरी है। और आखिरी के दिना में ऐसी कही जाते हैंगे कि बोन जो खूब ही तपत है, सुबह में सांप बिच्छू के अंडा सोई धरती के भीतर खत्म हो जाते हैं, नहीं तो जैसे ही बारिश हुई है सो बे नाए माए घुसे हमारे घर में, सो उनको भी तो ध्यान रखने पड़े। कहवे को मतलब जो है कि प्रकृति ने अपनों भी जो नियम बनाए वे सब पर्यावरण में एक संतुलन बनो रह जाके लाने बनाए हैंगे। अब हमारा कर्तव्य जो है कि प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखे के लाने हम भी अपनों अपनों फर्ज निभाएं, पौधारोपण करें। गर्मी के दिन है, आम के बिना तो कोई कल्पना नहीं कर सकत, घर में रोज तरह तरह के आम खाए जा रहे, आम खा के गुठली फेंकने नहीं आ, इन गुठलियों को छोटे छोटे गमलन में बो दो और साल भर उनमें पानी देते रहो सींचो, और फिर अगली साल है भी नेक नेक से पौधा तैयार हो जाए, उनकी खूब देखभाल करो, और फिर उन्हें संकल्प करके ऐसी जगह लगवाओ कि जिसे भी होते फलत फूलत रहे, है कि नहीं। अगर सोच के देखियो भैया, कम से कम अगर हम एक आदमी 10 वृक्ष लगाए तो सोचो जरा, और बाकी देखभाल करें तो धरती की चूनर तो कैसी हरियाली हो जाए, और बड़ा ताप से हमें राहत भी मिल जाए, और फिर न्याऊ चार उतर पे जितना खूब पेड़ पौधे हो गए सो फिर देखो हम जिते कड़े सो ऐसा लगे कि बस जहाँ हमें एक छैया मिल जाए कि तुम पेड़ की छैया में बैठ के, और बस फिर खूब ही देखो चाहे फिर खूब जेठ की गर्मी होए और चाहे खूब तपे नौ तपा, फिर हमें तो ऐसा लगे कि इतना ही हम बैठ जाएँ अपने पेड़न की छाँव में, और इतना ही बैठ के गाय बजाएँ।

0: बहुत ही आनंद आ गया सुंदरलाल विश्वकर्मा भैया से जो लोकगीत सुन के। और सांची कह रहे ऐसा ही लगा था कि बस हमें कितना बढ़िया पेड़ की छैया में लग जाए। और भैया वैसे भी देखो जो ये सब प्रयास जब हम सब जने मिल के करा थे तो अपने आप हमारी प्रकृति में हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहे थे और हमारी फसलें हैं वे भी अच्छी हरी भरी होती हैंगी। और हरी भरी फसलें करवे के लाने जो जरूरी नहीं है कि हमको रासायनिक खाद है भाई को उपयोग करने हैं। और भैया जैविक खेती तो अब ऐसी बात हैगी कि हमको जई को बढ़ावा देने हैं जिससे कि हमको अच्छो साफ सुथरो अनाज हमें कोनो भी रसायन से मुक्त अनाज मिले और फिर हम जो है वाय खा के स्वस्थ रहें। सो भैया जैविक खेती को बढ़ावा देवे के लाने समय समय पे हम आप औरन को अपने कार्यक्रम में ऐसे विषय शामिल करके सुनवाते हैं कि जाको आप लाभ लो और अपनी कृषि खेती बाड़ी में वाको उपयोग कर सको। सो आज कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत सुनत है जो भेंटवार्ता विषय है जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन। विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर SB अग्रवाल।
1: किसान भाइयों राम राम। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक कार्यक्रम के अंतर्गत आज जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच हैं डॉक्टर SB अग्रवाल साहब जो कि सह प्राध्यापक हैं सस्य विज्ञान विभाग। डॉक्टर SB अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सभी को।
1: डॉक्टर साहब जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैविक खेती एक्चुअली होता क्या है, किसान भाइयों को इसको थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: देखिए हमारा जो किसान है वो जैविक खेती आदिकाल से करता आ रहा है और आज कोई नई चीज़ नहीं है उनके लिए, ये सब पुराना तरीका था। परंतु कुछ जैविक खेती में कुछ नियंत्रण के कुछ तरीके बताए हैं जिससे कि हम शुद्ध आदान उपयोग करें और शुद्ध उत्पाद प्राप्त करें। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जमीन को जीवित रखें, दूसरा पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे वो पौधे की स्वास्थ्य की बात हो या मनुष्य की या खाने वाले जानवरों की हो, किसी की भी हो, जो जीवित हैं उनके स्वास्थ्य का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। यही जैविक खेती का प्रमुख और मुख्य सिद्धांत है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हम जैविक खेती में जितने भी जीवाणु हैं या जैविक उत्पाद हैं जो पौधों की क्रियाओं से जानवर की क्रियाओं से पैदा होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक तौर से जो फैक्ट्रियों या आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार किए जाते हैं उन पदार्थों का इसमें उपयोग करना प्रतिबंधित होता है।
1: जी हाँ, तो किसान भाइयों आप जैविक खेती को समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब जैविक खेती के आदान कौन कौन से होते हैं जिनका हमारे किसान भाई बहुत आयत में उपयोग करते हैं, ऐसे उत्पाद जिनको कि वो जैविक खेती में उपयोग कर सकते हैं?
2: देखिए जैविक खेती में तीन चार जो मुख्य बिंदु हैं जिनमें आदानों का उपयोग किया जाता है, जैसे पोषक तत्व प्रबंधन करना है, नींदा का प्रबंधन करना है और कीट व्याधियों का भी प्रबंधन करना है। ये मुख्य तीन आदान है। और इसके अलावा जैसे पानी की व्यवस्था करना है वो एक आदान अपने आप में जो प्राकृतिक है। परंतु जो जैविक खेती में जो पोषक तत्व के लिए उपयोग किए जाते हैं उन आदानों में मुख्य रूप से एक हरी खाद होती है, दूसरा यदि खाद बना हुआ दिया जाना है तो गोबर की खाद होती है और या केचुए की खाद, ये मुख्य रूप से पोषक तत्व प्रबंधन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। सामान्य तौर से हमारे किसान इसमें आदान में फसल चक्र अपना कर भी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि ये जीवाणु खाद इसमें मुख्य रूप से अपना जो भागीदारी रखते हैं, अपना योगदान देते हैं।
1: जी हाँ, इसका मतलब कि जो हमारे जैविक आदान की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्राकृतिक रूप से तो है ही, उसके अलावा हम जो दूसरे उत्पाद हैं उनका भी उपयोग इसमें करते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम केचुआ खाद बनाने की बात करें या उसके उपयोग की, तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बड़े आसान तरीके से कम लागत में केचुआ खाद उत्पादन कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है?
2: निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों को ये एक प्रकृति का वरदान है जो कि एक फैक्ट्री के रूप में काम करता है, वो केचुआ आपको और आपकी खेती को लाभदायी बना सकता है। हमारे खेती से निकलने वाले अवशेषों को पशुओं के गोबर और मलमूत्र से, जो भी उनके खाद्यान्न के अवशेष होते हैं उनसे, या घर से कचरा निकलता है, शहर से कचरा निकलता है, जिसको हम कचरा समझते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो पैदा हुआ है और उसका हमने उपयोग करने के बाद छोड़ दिया है, उन अवशेषों का उपयोग करते हुए हम केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। ये केचुआ खाद तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार के केचुए के हमारे किसान भाइयों के यहाँ गाँवों में कई के यहाँ इस तरीके के प्रदर्शन किए गए हैं जिनमें वो घर पर केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। फिर भी हम यह बताना चाहेंगे कि उनको एक विशेष प्रकार के केचुआ जिसको जो कि सिर्फ कचरा खाता है, मिट्टी बहुत विषम परिस्थितियों में खाता है, और इस केचुए का नाम होता है आइसिनिया फैटिडा। और इसका उपयोग करते हुए हम साल में लगभग 5 बार एक चक्र अपनाते हुए 5 बार किसी भी तरीके से

0: केचुए का उपयोग करते हुए खाद तैयार कर सकती है। और इसे को तैयार करने के लिए अभी तक ये धारणा थी कि हमें कहीं टांका बनाना पड़ेगा या उसी तरीके के आयताकार चौकोर किसी भी प्रकार के जो कि पॉलीथिन के भी कुछ स्ट्रक्चर बने हुए आ रहे हैं बाजार से, उनका उपयोग करना जरूरी होगा। परंतु हमारे अनुसार ये सब चीज़ों में पैसा खर्च करना, ये समय लगाना और एक स्थायी तौर से कोई भी निर्माण करने के बाद में टांका बनाना, ये आवश्यक नहीं है। हम पेड़ के नीचे जहाँ झाड़ पेड़ हैं, छाया है, वहाँ पर कर सकते हैं। नहीं है तो हम सिर्फ कचरे का ढेर लगाएं, उसके ऊपर गोबर डालें और पानी से गीला करने के बाद 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 20 से 21 दिन बाद उसमें केंचुए छोड़ दें पानी डालने के बाद, तो वो केंचुआ अपना काम करना शुरू कर देता है। उसको प्रकाश ज़्यादातर उपलब्ध न हो या जहाँ सूर्य का प्रकाश उसमें न जा पाए, या जो पशु पक्षी हैं उसको केंचुओं को कहीं से नुकसान न करें, अंधेरा रखें, अंधेरा रखने के लिए या ठंडा रखने के लिए पानी डालने के साथ साथ उसको ढककर रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो ढकने के लिए भी हम सूखे कचरे या जो जूट की बोरी होती है उनको, या कॉटन के कोई कपड़े जिनका उपयोग नहीं करना है, उनको समान तह बिछा कर उसको ढककर रख सकते हैं। और ये केंचुआ का एक नियम है कि वो अपने वजन के बराबर ही खाता है, और उसका जो खाने का तरीका है, जैसे हमने 1 किलो केंचुए डाले हैं तो वो प्रतिदिन 1 किलो खाता है, और उसकी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है खाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अगर खाद हम ये भी कहना उचित नहीं है कि हम इतने दिनों में कर लेंगे तैयार हो जाएगा, पर यह सही है कि केंचुए की संख्या अगर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी खाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद बनकर तैयार हो जाएगा। और बस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें 3 सप्ताह के बाद ही इसमें केंचुए छोड़ना चाहिए, अन्यथा ये गर्म रहेगा तो केंचुए उसमें मर सकते हैं, या केंचुए को गर्मी लगेगी, यहाँ गर्मी के कारण वो भाग सकता है, इसलिए हमें उसको 3 सप्ताह के बाद ही केंचुए छोड़ना चाहिए।
1: डॉक्टर अग्रवाल, जब हम केचुआ खाद बनाते हैं उस समय कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो?
0: हाँ, सावधानी के तौर पर हमने जैसा पहला ये एक बताया कि उसमें केचुए छोड़ने का समय ध्यान रखें, दूसरा ढककर रखें, और ढककर रखने का मतलब दो है, पॉलीथिन से नहीं ढकना है, अन्यथा पॉलीथिन से ढकने के कारण वहाँ जो उसके कचरे से जो वाष्प निकलेगी, गर्मी निकलेगी, वो पॉलीथिन के कारण वहीं इकट्ठा हो जाएगी तो केंचुए को नुकसान करेगी, इसलिए उसको पॉलीथिन से कभी नहीं ढकना चाहिए। उनको ढकने के लिए जूट की बोरी, कोई कॉटन के कपड़े जिनका उपयोग कर चुके हैं, या घास फूस जो सूखा है उससे ढकें, जिससे ये फायदा मैंने आपको बताया कि कोई भी पक्षी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक विशेष तौर से जहां कहीं गर्मी का समय है या पानी की जहां कमी होती है, वहां जमीन से चींटियां निकलकर या और दूसरे कुछ इनके हानिकारक हैं छोटे सूक्ष्म जीव जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे बचने के लिए जहां पर हमें ढेरी बनाना है उस सतह पर पहले जला हुआ तेल, जो गाड़ियों का तेल जला हुआ होता है, उसको समान रूप से छिड़क दें और उसी के ऊपर ढेरी बनाएं तो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसमें पानी का ध्यान रखें, जब भी सूखने की स्थिति आए, यानी हमें सूखने का अंदाज इस चीज से लगा सकते हैं कि यदि वो कचरे को हाथ में लें और लड्डू बनाए और बन जाए तब समझ लीजिए पानी है उसके अंदर, यदि वो बिखरने लगे तो हमें उसमें पानी डालना आवश्यक होता है, और विशेषकर जब गर्मी का समय आता है तो पानी का वाष्पन जल्दी जल्दी होता है, उससे बचने के लिए और कहीं किसी तरीके से केंचुए को नुकसान न होने पाए, इसको हमें समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, केंचुआ खाद उत्पादन की बड़ी सरल विधि डॉक्टर अग्रवाल द्वारा आपको बताई गई है और सावधानियां भी, तो आप इन चीजों को ध्यान रखते हुए केंचुआ खाद उत्पादन करें और इसका लाभ लें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम जैविक आदानों की बात करते हैं तो जो आप जैविक हमारे जो जैव उर्वरक होते हैं, या हम उनको बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं, और अगर हम वर्ष भर की बात करें तो ऐसे कौन कौन से जैव उर्वरक है जिनका हम उपयोग वर्ष भर कर सकते हैं फसलों में और उनका लाभ हमारे किसान भाई को प्राप्त?
0: जैसे जैसे मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं, उनमें दो तरीके की विशेष तौर से फसलें होती हैं, जैसे एक दलहनी होती है और एक हम उसको धान्य फसलें कहते हैं, वो होती हैं। तो जो दलहनी फसलें हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं, जो उनके कल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सहज उपलब्ध हैं, वो सस्ते भी हैं और बहुत कारक कारक हैं, इसलिए हम दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम के विभिन्न कल्चर का उपयोग कर सकते हैं और धान्य फसलों में जैसे हम अगर गेहूं की बात करते हैं तो उसके लिए एजोटोबैक्टर अच्छा होता है क्योंकि ये ठंड में जो सर्दी के मौसम की फसल है उसमें ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यदि हम मक्का की बात करते हैं, ज्वार की है या कोदो कुटकी रागी सवा हैं, इनके लिए हमें एजोस्पिरिलम का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है एजोटोबैक्टर की।

0: ये हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कई प्रयोग किए गए हैं, और ये जैव उत्पादक जो संस्था है वहाँ जो एक लैब है उस लैब में भी इस तरीके के प्रयोग हुए हैं। तो इसके साथ साथ एक और विशेष प्रकार का जीवाणु खाद तैयार किया गया है जो गन्ने की फसल के लिए एसीटोबैक्टर बहुत प्रभावी है। इसका फायदा भी गन्ने में उसके उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी सुधार करने में सहायक होता है। इनके अलावा कुछ ऐसे हैं जीवाणु खाद जिनका सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक की उपलब्धता बढ़ाते हैं, पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाते हैं और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं, इनके लिए भी उपलब्ध हैं, ये बनाए जा रहे हैं और किसानों के लिए भी वहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि जड़ों के विकास के लिए, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, बैम के नाम से ये उपलब्ध है, और ये जो बैम है इस बैम के कारण पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, और चाहे वो धान्य फसलें हों और दूसरे पौधे जो झाड़ियों वाले हैं, बड़े पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, उनके लिए भी ये लाभदायी होता है, जिसका उपयोग हमें सतत करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक ऐसी भी जीवाणु है जो सूक्ष्म जीवाणु है, सीडोमोनास है, जो कि पौधे के विकास के साथ साथ उसके जो फूल आने की अवस्था है, फूल विकास करने की समय है, उस समय में सहायक होता है, और सूक्ष्म जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं उनको भी रोकने का काम करता है। ट्राइकोडर्मा इसी भी प्रकार का एक फफूंद है, जिनको बीज उपचार के साथ साथ भूमि उपचार भी कर सकते हैं, जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इन जो दलहनी फसलें हैं उनमें ज्यादातर जड़ से और बीज से और मिट्टी से दोनों से बीमारियां होती हैं, उनके रोकने के लिए, उनको बाधित करने के लिए ये फफूंद बहुत कारगर है।
1: मतलब ट्राइकोडर्मा जो है हम कह सकते हैं कि रामबाण औषधि के रूप में काम करता है, अगर हम फफूंद वाली बीमारियों के लिए
0: बात
1: उपयोग
0: करते
1: करें तो।
0: हैं।
1: और एक जैविक उत्पाद भी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमारे बीच में जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर एसबी अग्रवाल साहब, जो कि सह प्राध्यापक हैं, उन्होंने आज हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सो भैया आरो, अब देखो ना, मई की महीना तो पूरा निकलेगा, अब जून आगा और जोन जो हमारी भौजी हरे माई के नहीं जा पाई हूँ, ये सोने कैसो लग रहा हुई है कि देखो पूरी छुट्टी कड़ी जा रही हैंगी और हमें जावे नहीं मिलो। अब हमारे भी गए जब छोटे भैया के लेगा गए थे सोते भी जो ही भाव, अब सब जने दिन भर बनाए खाए भौजी तरह तरह के व्यंजन बना के खवा रही, कहूँ पनो बना रही, कहूँ वामे दुनिया भर की चीज़ें डाल डाल के सलाद काट के खवा रही, तो आम दे रही खावे के लाने और दिन भर अपने लगी रहें और फिर थक जाएं, थक के नेक देर परी तो भैया ने फिर आवाज़ दी चिमानी सी परी थी कि बोले काहे कहाँ चली गई, बोले काहे कहाँ होगा, बोले जो देखो चौका में छिपकली फिर रही, बोली आवाज़ तो तुम्हें ऐसे दे रहा जैसे चौका में मगरा घुस गया हो, अरे भगा दो छिपकली घुस गई, तो बोले अरे भैया गर्मी को टाइम है इतने होते कीड़ा मकोड़ा घुसा दे ना चीज़ें ढाक मार के रखो करे, बोले हमारी सबरी चीज़ें ढकी रखी रहती, अब तुम ना सिखाओ हमें 20 साल हो गए हैंगे जो घर गृहस्थी तुम्हारी संभालत संभालत, हम और उनको भी समझ में आई कि अब भौजी हो गई बहुत परेशान है, इन्हें माई के जावे नहीं मिल रहा है, हम लोग ने भैया से कही सुनो हम और इतने रुके हैंगे जाओ तो मैंने जरा हुआ तो ले आओ इनके अम्मा बाबू जी से सबसे मिलवा के ले आओ, कैसे कि भैया देखो सीधी सी बात है जैसे हम और उनको लगत है कि अब साल में एक बार के चले माई के बताई बाप से अपने सब मिले आए अम्मा बाबू से काका काकियन से सबसे मिल के आ जाए सो सभी को लगाते, और फिर ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही जगह की हमारी जिम्मेदारी है भैया, साल भर सभी के जो माँ बाप हैं बूढ़े सो बेबी तो अपनी मौनियन की रास्ता देखा थेंगे कि हमें अपनी मौनी देखने को मिल जाए, और फिर मौनियन के भी अपने माता पिता के प्रति कछु कर्तव्य होते हैंगे, और भैया आज तो है 1 जून और आज है विश्व अभिभावक दिवस, जो विश्व में माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम उनके त्याग और समर्पण के प्रति आदर प्रकट करने को दिना है, वैसे तो माता पिता के त्याग प्रेम और समर्पण को कछु मोल नहीं है ना कोई चुका सकत है, लेकिन उनको ध्यान रखो उनकी जरूरतन को ध्यान रखो जो हमई को तो कर्तव्य है, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि बढ़ती उम्र में उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखवो और भी कैसो भोजन कर रहे हैंगे जाको ध्यान रखवो और बदलते मौसम में उनको ध्यान रखवो जाकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होत हैगी, हम और जो ऐसी सोचन लगा कि अरे बुढ़ापो है गो सो अब चल तन नहीं बन रहा हो कि अब सुनानी पड़ रही कि दिखानी पड़ रही, हर चीज़ को इलाज संभव है, और अब तो देखो ना हमारी सरकार कितनी अच्छी अच्छी योजनाएँ हैंगी कि हमारे को सभी जनन को जो है वो आयुष्मान कार्ड बन जाते 70 साल के ऊपर को तो भैया काय नहीं जाको लाभ ला हो जाए, सो अब हमें जो नहीं सोचने की अरे बुढ़ापो है सो अब तो जो हुई है आहा कचुना हुई है बेबी अच्छी तरह से स्वस्थ रहे हैं और पहले की लेगा चलत फिरत रहे हैं उनको ध्यान धरो समय समय पे सब डॉक्टर को दिखाओ, और सबसे बड़ी चीज जो कि हम उन्हें का खुआ सकत उनके स्वास्थ्य के हिसाब से का नहीं खुआ सकत जाको ध्यान रखो बहुत जरूरी है, सो विश्व अभिभावक दिवस पे हमारे सभी बड़े बुजुर्गन को बस हम जो ही शुभकामना देते हैं कि आपको आशीर्वाद हम सब मोड़ी मोड़न के सामने सब लड़का बच्चन के ऊपर आपको आशीर्वाद बनत रहे और ईश्वर हम और उनको इतनी शक्ति दे इतनी समझ दे कि आपकी आखिरी सांस तक हम और आपकी सेवा में कछु कमी ना कर पाए, और भैया हरो हमारी अम्मा जिनने हमें 9 महीना पेट में पालो और उनको दूध पी के हम सब जने हष्ट पुष्ट बलवान बने, अब हमारी बारी है उनको ध्यान धरवे की, और हमारी उन्हीं के संगे एक और माता हैंगी भी हैंगी हमारी गौ माता जिनको दूध पी के हमारे सब जने हष्ट पुष्ट बलवान बने, सो आज 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वही मनाओ जाते है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में एक ही शुरुआत करी गई, और जाको मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भोजन के मूल रूप में दूध के महत्व पोषण मूल्य और बाकी बात डेयरी उद्योग की भूमिका है कि नहीं, सो अब देखो ना डेयरी उद्योग कितने बड़े बड़े स्तर पर चलत है गो, सो डेयरी उद्योग को जो उद्देश्य सिर्फ जो ही नहीं है कि हमें अच्छी मात्रा में दूध मिल जाए, अरे भैया वे उनकी भी तो कितनी देखभाल करने पड़त हैगी, उनके उचित खाना की व्यवस्था हुई है पानी की व्यवस्था हुई है उनके रहवे की व्यवस्था हुई है, और बाकी बाद उतर कितने पशु चिकित्सक हैं जिनसे कि उनकी समय समय पे जांच करवाने पड़त, कैसे कि आप जो सोचो कि जौन जौन डेयरी में इतने सारे हमारी जो गैया भैंसियाँ सब पली रहती हैंगी, तो अगर कोनो भी संक्रामक बीमारी फैलत हैगी तो फिर वासे को एक को भी बचाव बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मौसम के हिसाब से फिर उनके टीका भी लगवाने पड़त हैंगे, और मौसम के हिसाब से सभी व्यवस्था जैसी हमें चाहने हमें ठंड में ठंड की व्यवस्था चाहने गर्मी में गर्मी की व्यवस्था चाहने हो बरसात से बचवे के लाने भी हमें व्यवस्था चाहने, सो ऐसी ही हमारे सबरे पशुअन को भी लगत हैगी, सो भैया विश्व दुग्ध दिवस पे हम और जो संकल्प करते हैं कि हम अपने पशुअन को भी वैसे ही ध्यान धरें जैसे कि हम अपने परिवार वालन को ध्यान धरते हैं, और फिर अपने घूम फिर के अपने अंगना में लौटे आते हैंगे। सो भैया और कहा है खूब मजेदार मजेदार बात है, तो घर में सब जने इकट्ठे होते हैंगे, सो अच्छो आनंद तो आता ही है गो। और काय ना हो भैया साल भर के तो देखो सब जने अपने अपने काम धंधे में, अपनी खेती बाड़ी में, अपनी नौकरी चाकरी में लगे रहते हैंगे, लेकिन साल में कम से कम हफ्ता 10 दिना तो ऐसे निकारे चाहिए कि सबरे बहन भैया हैं वे सब जने इकट्ठे हों, हंसें बोलें और बाकी बाद फिर से तैयार हो जाएं कि भैया अब हम साल भर के लाने खूब हमें ऊर्जा मिल गई, अब अगली साल हम फिर सब जने प्रेम से मिलें बोलें एक दूसरे से खूब हंस के बातें करें। भैया जई के लाने जिंदगी है, नहीं तो देखो ना अपनों अपनों कमात खात रहो बैठे रहो, है कि नहीं। ऐसा कोई छोटो बड़ो नहीं है, जी के पास जितो है वो सब पर्याप्त है, सबसे बड़ी चीज़ है हंस के बोलवो बैठवो गावो बजावो।

0: तो भैया बहुत ही नौ नौ जो हमें लोकगीत सुना हमारे विनोद कुमार सेन भैया ने, और अब बातें थोड़ी सी और करें, पहले सुनाते हैं जो संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: सो भैया आ रहा हूं, देखो जो हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही हैगी, और जो दिनान जो गर्मी बढ़ रही हैगी, और जो ताप बढ़ रहा है, सो अब हमारी जिम्मेदारी हैगी, बार बार से कह रहे हैंगे। अब 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, सो दिवस सिर्फ इसे नहीं मनाने की एक पौधा लगा के हमने फोटो खिंचवा ली और हमने डाल दी भाई अपने स्टेटस में व्हाट्सएप के, हाँ हमें संकल्प लेने हैं। और आज हमारे पास 4 दिन है, सोच लो कितने कौन से पौधारोपण करने हैं अपन औरन को, है कि नहीं है। और फिर हमें सिर्फ पौधारोपण भर नहीं करने हैं गो, फिर हमें बाकी साल भर देखभाल भी करने हैं। इसे देखभाल करने हैं कि जब अगले पर्यावरण दिवस पे आप जब देखो ना, तो एक मन में कितनी तसल्ली हुई है कि देखो हमने पिछले साल जो कितनों अच्छा काम करो तो कि ये पौधा इतने बड़े बड़े हो गए। तो देखो पतो करो अपने आसपास के कितों नई कॉलोनी बन रही हुई है, कितों मंदिर बन रहे, कितों बगीचा बन रहा है, तो देखो पतो करो कि कितने का हो रहा हो। सो एक एक पौधा सब्जनी अपनी तरफ से भी ले जाओ। सोचो अगर हम एक एक पौधा सब्जनी अपनी तरफ से ले गए तो साल भर में कितने सारे पौधा तैयार हो जाए हैं। तो हमारी बात बिल्कुल मानियो और फिर बताइयो कि आपने हमें चिट्ठी जरूर लिखी होगी कितने कितने पौधा लगाए हैं, है ना, हमें इंतजार रहे आपकी चिट्ठियां को। सो भैया हारो अब बातें तो आज हमने खूब सारी कर ली, अब हमें जावे की हो रही है कि बेरा। सो हमें अब देव सब जने विदास, आप सभी जनन को हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने वाले हैं सुर्खियों में। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाली चीज जो देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक सेकंड आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए जो एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रहों का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमय। अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमय आल्सो मेंशन अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। नाउ हेल्थ इज वन थिंग दैट जस्ट कैन नॉट बी ignore that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now this in fact has turned out to be the world's largest government funded health insurance scheme, offering up to

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये गीत। इसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल ने।
1: आज है तुम पे प्यार आया है।
0: अजीज कैसी के बोल हैं।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म के लिए श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत, शब्द थे गुलजार के, संगीत खयाम का। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से, इसे गाया मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की।

फिल्म संगीत के आखिर में श्रोताओं आप सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म के लिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत, संतोष आनंद का गीत, लक्ष्मीकांत मणिलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे आज रात 10:30 बजे सुनना ना भूलिएगा मन भावन। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
9: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
8: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
10: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
8: Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.
10: More than 10 consignments are being shipped availing preferential duty access in Oman from different parts of India. Oman is a gateway to

0: कर लेते हैं।
1: द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 265 मिलियन टन्स इन 2013-14 टू अराउंड 358 मिलियन टन्स इन 2024-25। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना विद अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 154 मिलियन टन्स। टुडे द इंडियन फार्मर स्टैंड्स नॉट जस्ट एज ए कल्टिवेटर बट एज ए की ड्राइवर ऑफ नेशनल ग्रोथ। विद दीपेंद्र, दिस इज आनंद कुमार फॉर आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
2: The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव

0: के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @iirnewsalerts पर भी #askiir के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन iir और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: नमस्कार। पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीपाद डॉक्टर बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत बार भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल मई जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
5: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज़ के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
4: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
5: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
5: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
6: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
5: नमस्कार।
4: नमस्कार
6: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
5: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी के एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
5: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
2: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपका कुछ भी बेहोशी का लक्षण ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
5: तो
2: जाता है।
5: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत बिल्कुल, क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है घर पर?
2: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है।

0: यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्जर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्जर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्जर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है। तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी,
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज़्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट वो कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
1: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं, जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें

0: कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
2: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इस पर क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
0: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ख़ास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड हैं। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
1: जी,
3: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
3: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो पॉसिबल, और साथ में आप

0: थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
2: देखिए आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूँ, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
2: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मेकानिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है और हमारा जो रीजनल सेंटर पर जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
2: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो आपका अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
3: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेशन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
0: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम

0: ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल जो गोद का बच्चा
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल उसके लिए सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पर।
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन। विलंबित एवं मध्य रचना 3 ताल में निबद्ध है। तबला संगतकार सुरेश पाठक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन, विलंबित एवं मध्य रचना तीन ताल में निबद्ध, तबला संगतकार सुरेश पाठक। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मन भावन। श्रोताओं, जो मन को भा जाए वही तो होता है मन भावन, है ना? फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको कृष्ण कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मन भावन कार्यक्रम की ये है पहली पेशकश।

महबूब की मेहंदी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए आपने सुना लता मंगेशकर का गाया ये गीत, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए आप सबने हमें पत्र लिखा, मिलन रेडियो श्रोता संघ प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जय श्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवांश सोनभणे, सुनीता खुशी सोनभणे, प्रियांश आशीष, पूनम सोनभणे, कृष्णा और शुभम सोनभणे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा,

बलबीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, जीसीएफ स्टेट परेल लाइन जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना राजपूत, बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, लल्लन बर्मन, शेख जमील, गोलू सोनी और बिसरता कोल, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

कभी कभी फिल्म का ये शीर्षक नगमा आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया, साहिर के शब्द, खयाम की धुन। और श्रोताओं, इस गीत का सुनवाने का अनुरोध आप सबका जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही, यंग रेडियो लिसनर्स क्लब जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया, पानदरीबाद जबलपुर से राजकुमार नामदेव, अंकित नामदेव, आनंदिता नामदेव, शोभा राजकुमारी, हर्षिता, पिंकी, नीतू और गौरी, सतना बिल्डिंग जबलपुर से अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी और ज्योति और गौरी, मन श्रोताओं गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा, कल्याणी मिश्रा, रिया मिश्रा, शलभ रक्षा और वैष्णवी मिश्रा, साथ ही रुद्रांश मिश्रा, आशीष चौबे, ऋचा चौबे, शानवी चौबे और पीएन मिश्रा, पोलीपाथर जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, राजरानी और सागर रजक, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे, शिवम, शुभांग और सृष्टि गद्रे, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, टीकमगढ़ पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और उनके परिजन, खापरखेड़ा रायसेन से तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार, आरती, ममता और गोमती, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा से लक्ष्मण रैकवार, विनीता, दीपेश वैष्णवी, वैशाली, हल्लू लल्ले और ऋषि रैकवार।

मुकद्दर का सिकंदर। श्रोताओं, ये नाम था उस फिल्म का जिसका गीत आप सुन रहे थे। स्वर दिया लता मंगेशकर ने, अनजान के शब्द कल्याण जी आनंद जी की धुन, और फरमाइश आप सबकी राजपुर से घेसू दिलवाले लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवाले छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार और जाविंदर कुमार वर्मा गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले बाजारपारा बेमित्रिया से भाई भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा परिमहल कासगंज से आबाद खान नबील खान आरफा खान इल्मा खान असलम सैफी मीरा सराय बदायूं से आफरीन और जमील खान बेड़ी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी ढोमने चंचल ढोमने अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार और हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय श्रीमती प्रीति और नवनीत राय।

रजिया सुल्तान फिल्म का ये गीत आपने सुना। अनुरोध आप सबका ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र और रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पिली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम और पलक पंखुड़ी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली सूर्यांशी, कोमल मेनका, माधवी साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन, बेमेतेरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे और महराज जहां, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, ग्राम पिंडरे जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और वान्या जैन, नर्मदा कॉलोनी मंडला से प्रोफेसर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परु, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्परानी और आकाश कुमार।

मन भावन कार्यक्रम का ये है आखिरी नगमा। पाकीज़ा फिल्म के लिए स्वर लता मंगेशकर का, शब्द कैफी आजमी के और संगीत गुलाम मोहम्मद का। फरमाइश गीत के बाद।

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। पाकीज़ा फिल्म के इस गीत को सुनने का अनुरोध आप सबका महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पंकेश, साक्षी मनन और तानिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी सिंह, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सिंह यहीं से, खुशी और रौनक सिंह, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुभद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, जिला उज्जैन से लिखते हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतना नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त, मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत प्रिंस एकांश कवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश कवाड़कर, श्रीमती वैशाली कवाड़कर, श्वेता सुमित कवाड़कर, कुमारी ध्वनि कवाड़कर परी और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

0: श्रोताओं, पाकीज़ा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। आप सबका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underline the importance of connectivity

पलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अब